بئس الاسم الفسوق بعد

من خشي الرحمن بالغيب وجاء

المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن

عصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वणायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरिन लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणज पहिरियों कदम वधायो खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: Osborne, MA, DHM Sindh, RHMB Islamabad, Homeopathic Consultant, I'm Family Physician, Senior Lecturer, Novik Medical Ba, Khamis Jumme, Chanchar Achar, I'm Sumar Te, Subhu Dahin Khan, Yetai, Marizan Jo Ilaj Ganda Ahin, Har Jumme, Chanchar I'm Achar Te, Bagher Fees Je Check Up Kayo Window, Yad Rakhanda, Marizan Ke Dawa Store Da Vatni Pondi, Mahiri Amraz, Nak Kan, Gallo, Purano Nazlo, Nichu, Mathe Jo Sur, Nazar Ji Kamzori, Kanajo Van, Kanajo Sur, Ghat Budan Me Achan, Sugar, Blood Pressure, Dilja Marz, Falij, Khang, TB, Mate Ji Ulcer, Mate Ji Jalan, Dili Jo Vadan, Jigar Ja Marz, Hepatitis B, C, Gurde Ji Patri, Masana Ji Patri Jo, Bagher Operation Ji Kamyab Ilaj Kayo Banyato, Gurdan Jo Infection, Chere Jo Rang Samro, Chere Ji Kharish, Fat Furdu, Baran Me Kada Jo Navadan, Mardan Ay Orton Me, Vazan Jo Navadan, Unan Sabni Bimaran Jo, Kamyab Ilaj Kayo Banyato, Rab Tele, 0301 9851.
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
3: जा पियो रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ही थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
6: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत ज़वाबित लागू हैं
7: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही رابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
3: न अदा
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
4: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा
5: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पीजे इलाके डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट बरसा आबगादी हमलो छह पुलिस अहलकार समेत 12 जना शहीद पंटी का वधिक जख्मी आबगादी बमबार बारूद सा भरल गाड़ी के दरांसदा में अमून मेला चेक पोस्ट सा टकरायो शहीदन में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर बोर तू एक बार भी शामिल जख्मी के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस ते फायरिंग बरजाकार शहीद टे जख्मी सिक्योरिटी फोर्स इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ गरु वजीर मोहसन नकवी बेन पारा चेक पोस्ट हमले की मजम्मत इंसानी जान के नुकसान थे दुख जो इजहार दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्जाव

0: लॉन्ग मार्च खां पोइ ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि त पहिरें छो न थियूं कयूं वञनि। केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी याद करे छॾी। पिशावर में सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सोहेल आफरीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि त हाणे छो न थियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरें बि तयार हुआसीं, हाणे बि आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजी एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मोहसिन नक़वी आहे। दड़े वेझो बेलो रोड ते चारण गोलाई वटि हथियारबंदनि जी गाॾी ते फायरिंग, 15 वीरनि जी निगरी मारिजी वई। फायरिंग सबबि कतुल थियल निगरी जी सुञाणप मुर्क महमूद तौर कई वई। मडरूल हेल्थ सेंटर दड़ो पहुचायो वियो। वाके जे इतलाह ते शहरियुनि जो वॾो अंगु पिण पहुची वियो। शहर में बदमनी ते गणती जो इज़हार, जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। ऐं सिंध सूबे जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अरबे रुपया बजेट हुअण बावजूद मकानी इदारनि जे कारगर्दी सुवाल या निशान बणियल। मलेर ज़िले जे टिनि टाउननि, टी यूनियन कमेटियुनि ऐं कराची मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन इंतज़ामिया जा अरबे रुपया आवाम खे को बि लाभ न ॾेई सघिया। इब्राहिम हैदरी गडाप ऐं मलेर टाउन म्यूनिसिपल कार्पोरेशन इंतज़ामिया जे सालाना 12 अरब रुपियनि खां वधीक बजेट हुजण जे बावजूद शहरी ऐं ॿाहिरनि जा इलाइक़ा खंडरात जो मंज़र पेश करण लॻा। मकान इदारनि जे नाले सबबि शहरी पीअण जे पाणी, रोडनि रस्तनि खां महरूम, सफ़ाई जो निज़ाम तबाह, खुलियल गटर इंसानी ज़िंदगियूं गड़काए रहिया आहिनि। शहरियुनि जो चवणु आहे त टाउननि ऐं यूनियन कमेटियुनि में ग्रेड 1 खां 17 ग्रेड ताईं सभई मुलाज़िम बजेट ते ॿार आहिनि, जेके मिली भगत करे करोड़नि रुपया खाई वञनि था, पर इलाइक़नि ते टको ख़र्च नथो कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

मेहराब पुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो सहूलियत पिण हुन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराब पुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोज मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।

0: जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं
1: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और

0: और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300002734, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301386545।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300338569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

ईरान के तजुजुन ते अमेरिका का बाज़ाबता तौर जवाब जो इंतजार ईरानी परदेही वजीर अब्बास राजी है तो अमेरिकी सदर जो शुरुआती रद्देमल डिठो है पर ट्रियाकड़ी कंदड़न जरिए जवाब न मिलो है। ईरान ट्रियाकड़ी कंदड़न तरफा हतमी मौकफ जान जो मुंतजर है इन ही बुनियाद से असि फैसलो कंदी। ट्रंप पारा अमेरिका में मिड टर्म चूंडन का बीहर हमलन जो इशारो दिनो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी बाबत ईरानी तजवीज रद्द करने की तस्दीक कर छी। ट्रंप है तो ईरान जंग हाराए रो है आबनया रूम्स भी खोलने ला तैयार वो है मां पान मुआदो चाहें तो ईरानी डील कबूल न है। ट्रंप बीहर आबनया रूम्स के ट्रंप स्ट्रीट जो नालो दई छो तस्वीर समाज वेबसाइट से जारी कर छी। केपीए के इलाके डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट भरसा आपघाती हमलो छह पुलिस अहलकार समेत 12 जना शहीद 35 का जख्मी। आपघाती बम्बार बारूद से भरल गाड़ी के दराजांद में अमन मिलाद चेक पोस्ट से टकराया। शहीदन में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर बिन औरतन एक बार भी शामिल। जख्मी के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस से भी फायरिंग बरजाकार शहीद। टे जख्मी सिक्योरिटी फोर्स इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन कर छो। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर अजम शहबाज शरीफ घरू वजीर मोहसिन नकवी बेन पारा चेक पोस्ट से हमले की मजामत। इंसानी जान के नुकसान से दुख जो इजहार दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्जा। बलोचिस्तान के शहर डेरा बुकटी में जिले चेयरमैन के घर से हमलो जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मार छह गिरफ्तार। अमन फोर्सेस जो एक रजाकार शहीद 3 जख्मी थी पिया। दुकी में रोड तमीर कंदड़ कंपनी के कैंप से दहशतगर्दन जो हमलो। अरणा पोरे तगवा फायरिंग की डेवट दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद भी जख्मी।

0: रोज़ीम सियाल मुबैना तौर अगवा अज़ीम सियाल के कार पनो आकिल भरसा सदूजा थाने वटा मिली आए वारस जो चवण है त कार के शीशे के रत लगल है। गुपचाणी में वाह में बुढ़ी फोत जनल नौजवान के कतल करण जो इल्जाम वारस जो चवण है त परवेज के तशद करण बाद कतल कर लाश वाह में लोड़े वो शफाफ जांच कर जवाबदार गिरफ्तार किया वे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: असली चीजां चारो मसालो जी सुन्याणप, ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जीजान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जीजान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद। जीजान चारो मसालो, जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
6: बैंक इस्लामनी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कीमहा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 3300-3105109, 3300-3105109।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 03013992836।
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
2: इतवार का दिन, इतवार के दिन के लिए हम लोग पूरा पूरा हफ्ता इंतजार कर रहे होते हैं, तो आज इतवार का इंतजार हमारा खत्म होता है क्योंकि आज हम लोग साथ में मौजूद हैं। तो देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है, कौन को मेरा सवाल सुनना चाह रहा है। तो सवाल सुनने के लिए आपने देर नहीं करना, मुझे SMS करके बताएं कि आप कौन को मेरा वेट में बैठा हुआ है सवाल सुनने के लिए। आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो ही मैं आपको अपना अपना आज वाला सवाल बताऊंगी, ताकि आज आप लोग विन हो सकें। टाइमली मुझे ज्वाइन किया करें और टाइमली आप मुझे जवाब दे दिया करें, ताकि आप विनर बन सकें आज के मेरे सेगमेंट के। तो जो जो सुन रहा है वो मुझे कॉमेंट कर सकता है, कॉमेंट करने के बाद मुझे बता सकता है कि भाई कॉमेंट जो जिसको मेरी आवाज़ जा रही है, जो मेरा मुझे सुन रहा है, मेरा शो सुन रहा है, वो मुझे कमेंट करके बताए कि भाई हम आपका सवाल सुनना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करें, यहाँ से मैं अपना सवाल बताऊंगी, आपने वहां से मुझे जवाब देना है और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बताना है, मैं आपका कर दूंगी सॉन्ग का प्ले। तो आप समझिएगा आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जो मेरे लिए न्यू लिस्टर होगा, मुझे लगेगा यार ये फर्स्ट टाइम आया, तो उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉन्ग मैं वैसे ही फ्री चला दूंगी। तो और क्या याद रखेंगे, आप लोग जाइए मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, कर रही हूँ आप इंतजार।

सुबह हो गई है, सारे जाग जाएं, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। लास्ट में जब आप लोग मुझे सॉन्ग का नाम बता रहे होते हैं तो मैं जब प्ले नहीं कर पा रही होती तो आप लोग कहते हैं कि यार हम लोग लेट हो गए थे, आप लोग बताते नहीं हैं, और आप लोग जो ना जवाब दे रहे होते हैं, फिर आप लोग शिकायत कर रहे थे आपने मेरे पसंद का सॉन्ग नहीं चलाया था, मैं कैसे चलाऊँ? आप लोग मुझे टाइमली जवाब देंगे तो ही तो मैं प्ले कर पाऊंगी जनाब। आप लोग जाइए, मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए, जब तक यहाँ पर हम सॉन्ग करते हैं प्ले।

यहाँ पर तो हम लोग एक सॉन्ग को करते हैं प्ले और सॉन्ग को सुनते हैं, सुबह को बनाते हैं बहुत हसीन आप लोगों के साथ. तो जी ऐसे है, कहते हैं कि चलो हम सॉन्ग एंजॉय कर लेते हैं. ओके जी, सॉन्ग को करते हैं एंजॉय, इसके बाद करते हैं बाकी की बातें. तो सवाल का जवाब तो मैं आप लोगों से लूंगी सवाल बताने के बाद. तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे मेरे सवाल का कौन इंतजार कर रहा है. तो जी करते हैं सवाल को यहाँ पर स्टार्ट. ओ सॉन्ग स्टार्ट और जब सवाल करूँगी मैं इस सॉन्ग के बाद. ओके जी,

बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग और खूबसूरत सा सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे आपके साथ. तो जी अभी देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. यहाँ पर टाइम होता है सवाल बताने का, तो मैं सवाल बताने लगी हूँ जनाब.

आपने मुझे बताना है जनाब के आपने बताना है कि उस शहर का नाम जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम भी बन जाए। अब आप जाइए और पता लगाइए, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा नाम, एक शहर का नाम ऐसा बताना है कि जिसको उल्टा लिखने पर एक शहर का नाम बच जाए। तो एक परिंदे का नाम मतलब एक शहर का नाम आप मुझे बता रहे हो, उसको उल्टा लिखोगे तो वो एक परिंदे का नाम भी बन जाए। तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए, बल्कि और चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, चीटिंग करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, अगर आप अपने दिल से बताएंगे तो आपको जवाब सामने ही आपके रखा हुआ होगा। तो जाइए और मुझे पता लगाइए, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपने एक पसंदीदा सॉन्ग का नाम मुझे ज़रूर बता देना है, ताकि जब आपका जवाब मैं देखूं तो अगर आपका जवाब ठीक होगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपको जो सॉन्ग है वो प्ले कर दूंगी, ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं बहुत बहुत बहुत बहुत आपका इंतज़ार। अच्छा देखते हैं अभी यहाँ पर कि हमारे साथ और कौन मौजूद हैं।

चलाया, जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा आते साथी फायजारी के बाद मैं सॉन्ग प्ले करती हूँ, लेकिन मैंने आज क्यों नहीं किया, मैंने इसी वजह से नहीं किया कि आपको कमेंट नहीं आया था। मैं पहले आपसे पूछूँ आप कहाँ हैं और कैसे हैं, तो फिर मैं आपका जो है ना पसंदीदा सॉन्ग भी, मतलब जो सिंगर है उसका सॉन्ग प्ले करूँगी। अच्छा जी, आपने मेरा सवाल सुना है, सवाल मेरा ये था, सवाल सबको मैं बता देती हूँ, सवाल मेरा ये था कि आपने मुझे बताना था कि उस शेर का नाम बताएं जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम भी बन जाए। तो इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, अब एक ऐसा नाम बताना है जो शेर का नाम भी हो और साथ में जो है वो एक परिंदे का नाम भी बन जाए ना। तो बस इतना सा थोड़ा सा एक टास्क है या कहाँ में ऐसे कह लें, तो जाइए और पता लगाइए और मुझे बताइए ताकि मैं भी सुन रही हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं तो, और सारे लिसनर सुन रहे हैं, मतलब मेरे को सॉन्ग सुनने बाकी हैं, तो जब आप बताएंगे वही तो हम आगे सॉन्ग सुन पाएंगे ना। तो जी यहाँ पर मेरा तो इंतजार यही है, बाकी तो अभी बहुत मतलब आधा घंटा हमारा गुजर गया है और रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। 1.5 घंटे के अंदर भी समझो सिर्फ 1 घंटा बचा है, क्योंकि ब्रेक्स होते हैं, न्यूज ब्रेक्स होते हैं, शॉर्ट कमर्शियल्स होते हैं, तो ये चले जाते हैं, तो हमारे टाइम कम हो जाता है। तो जी आपने क्या करना है, जाके मुझे टाइमली मुझे बताना है, ताकि अगर आप मेरा सेगमेंट का विन करना चाहते हैं, विन जब विनर बनेंगे तो फिर मैं आपको जाहिर सी बात इनाम मिलूंगी और सॉन्ग भी प्ले होगा, तो बहुत खुशी की बात है ये तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, कि नए लिसनर्स आज जो विन करने वाले हैं या जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं वो विन करेंगे। तो देखते हैं, ये तो रेस होती है, देखते हैं कि कौन जीतता है। जी सवाल मैं अपना रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। लेकिन खैर मुझे बहुत खुशी हुई मसरूर अहमद कि आपने पहले थोड़ी देर से किया रिप्लाई मैसेज, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉमेंट किया। तो ऐसे ही रहता है, आपको मुझे खुश रखे, आप हमेशा खुश रहें, ऐसे मुझे ज्वाइन करते रहें, हर इतवार को रहता है आपका मेरा साथ, जैसा कि आपको पता है पूरे पूरे 2 घंटे के लिए और बात करें मेरे रहते हैं आप और मेरे साथ। तो जी सवाल मैं अपना रिपीट करती हूँ, शेर का नाम बताना है जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम भी बन जाए। तो जी अभी चलते हैं यहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बात, रहिएगा मेरे साथ। It's 11:30.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम, 5 डे ब्यूटी, मेरा विटामिन और भरपूर खूबियां, फ्रेश एज ब्यूटी क्रीम, स्किन का राज, ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 0307 3।
3: मौजूद है, देख लेते हैं पहले तो हमारे साथ और कौन मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सलाम स्वीट सना खान, कैसी हो आप, शो नाइस, वॉइस नाइस, म्यूजिक नाइस, आप भी नाइस होंगी, हाई एम वसीम। अच्छा वसीम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप ज़रा मुझे बताइए तो, ताकि मुझे और लिसनर्स, सुनने वाले लिसनर्स को जो है पता चल जाए कि आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कौन हैं आप। वसीम तो है, मतलब कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे आप मुझे कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक और हमारे पास बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो हम वो सॉन्ग को भी सुनेंगे जी। यहाँ पर सॉन्ग को मैं करती हूँ प्ले, सॉन्ग को सुनते हैं साथ में, खानी का यूनिवर्सिटी सॉन्ग है, तो मजे मजे के सॉन्ग को करेंगे आज इन्जॉय। सवाल जिसे मैंने अभी तक नहीं सुना, सवाल देते हैं उसके बाद सुनते हैं सॉन्ग को। सवाल मेरा ये था कि आपने बताना है मुझे उस शहर का नाम बताएं जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम भी बन जाता है, तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए, और मुझे ज्वाइन करने के लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने टाइप करना है 888 पेज क्या लिखे विथ योर सिटी नेम, आप प्यार से नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे फेसबुक पे आप लाइव कमेंट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आपने ऑन करना है, फेसबुक जैसे आप ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको मेरे नाम का फ्लैट दिख जाता है विथ अजय सिन्हा के नाम से, आओ बात करें, शामिल आप हो जाते हैं बिना देर किए, बिना मेरी आवाज़ को सुनने के बाद बिना देर किए आपने क्या करना है, जाके कमेंट करना है, लाइक करना है और कमेंट करके शेयर करना है आपने मेरे पेज को, मुझे पता चल जाएगा किस मेरे पेज को शेयर किया किसने नहीं, तो जाइए देर किए बगैर आपने मेरे पेज को शेयर करना, कमेंट करना और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी मुझे ज़रूर बता के भेज दें, ताकि जिन अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो जहाँ पर वहाँ पर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर दूँगी। यहाँ पर सुनते हैं एक और सॉन्ग, जुड़िएगा मेरे साथ।

0: कुछ नॉर्मल नहीं होता और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरे बच्चों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे उन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: अरे उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तुम खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: जैसे कि सुन रहे थे हम लोग यहाँ पर खूबसूरत सा सॉन्ग। और जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी हमारे पास एक और टाइम होता है छोटे से शौक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का। जैसे ही हम ब्रेक पे जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे रहेगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल आपको रिपीट करते जाऊँ जी। मेरा सवाल आपको ये था कि आपने बताना है जस्ट इतना, शेर का नाम बताना है कि जिसको उल्टा दिखने पर एक परिंदे का नाम बन जाए। तो आपने जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए। और चिटिंग तो आप करिएगा नहीं, क्योंकि चिटिंग से आपको बिल्कुल नहीं पता चलने वाला। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना दिमाग को चलाना है और दिमाग चलाकर आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं मैं मस्त कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम, कहते हैं कि जी मैं रोड़ी से हूँ। अच्छा जी, रोड़ी से हैं वो। ओके जी, आप रोड़ी से हैं। रोड़ी से कहाँ पर हैं, किस जगह से हैं, रोड़ी से सुन रहे हैं आप? इस वक्त ऐसा क्या काम कर रहे हैं, ऑफिस हैं, ऑफिस चले आज क्लोज होगा, किसी शॉप पर हैं, ड्यूटी पर हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह पे आप बैठ के मेरा शो सुन रहे हैं, ये भी जरूर मुझे बताइएगा। तो जी यहाँ पर आपने मेरा सवाल सुन लिया है। सवाल सुनने के साथ साथ आप लोग मुझे अपने सॉन्ग का जो आपको पसंद है उस सॉन्ग का नाम बता सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर छोटे से शॉक मेरे ब्रेक का, ब्रेक की तरफ जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। लेकिन रहेगा मेरे साथ, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मजे मजे के साथ सॉन्ग सुनने वाले हैं इस ब्रेक से वापस आने के बाद। क्योंकि मैं 12 बजे के फौरन बाद ही अपना जवाब आप लोगों को बता दूंगी। और आप लोगों से अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा तो ठीक है, आप लोग जीत जाएंगे, नहीं तो आज आपको मेरे पसंद के सॉन्ग सुनना पड़ेंगे, मजे मजे वाले, प्यारे प्यारे वाले। तो जी, और सेगमेंट तो फिर मैं अपनी मर्जी का चला रही होती हूँ। जब अगर आपको सब सॉन्ग मैं आपको बता रही हूँ अपनी पसंद के, आप बता सकते हैं। तो अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो इट्स ओके, तो मेरे पसंद का आपको सॉन्ग सुनना पड़ेंगे। तो आज यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से सॉन्ग हैं जो मैं अपने पसंद का आप लोग को सुनाऊंगी साथ में। चलते हैं अभी ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे बिना देर के। ओके जी,
1: AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359212-0।
5: This program is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

पूरी। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कहते हैं कि सना खान में मसन रोड रोडी से किराना स्टोर चलाता हूँ। अच्छा, किराना स्टोर चलाते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो किराना स्टोर आप चलाते हैं मासन रोड, ये मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन खैर है और खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया वहाँ से। तो ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर इतवार ओनली ओनली ओनली ओनली ओनली ओनली ऑन संडे सुबह 11 से 2 बजे एक बजे तक रहता है मेरा और आपके साथ पूरे 2 घंटे के लिए। तो आपने आज भी ऐसे ही करना है जी, मेरे साथ हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग ऐसा मतलब जो है आज क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि आई थिंक वो सिटी है, ओके नाम बताते हैं, लिखो तो और उल्टा लिखो तो ओके जी। जेपल जी, जेपल कैसे हैं आप, और बहुत टाइम बाद आपने ज्वाइन किया है। और साथ में कहते हैं सेपल कराची से, हेलो आरजे, हैप्पी वाली मॉर्निंग, नाइस डे, सुपर संडे, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में होने वाला था गुड इवनिंग, और उससे पहले ही आपने गुड आफ्टरनून सॉरी, और आपने उससे पहले गुड मॉर्निंग कहती है, शुक्र है, शुक्र है। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि जेपल आप कैसे हैं। कराची से आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे और बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया कि, और ऐसे आई होप कि आप मुझे हर इतवार ऐसे ही ज्वाइन करते रहेंगे ओनली ऑन संडे, और जैसा कि रहता है मेरा आपको साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए सुबह 11 से 2 बजे तक। तो ऐसे ही आपको भी जो है सुपर वाला गुड मॉर्निंग है संडे पे। तो जी नाश्ता शाश्ता कर लिया आपने, चाय शाही पी ली है, अकेले के नहीं पिए आज आपने, क्या सब प्लेन है, कराची का मौसम कैसा है मुझे जरूर बताएं। कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही, सर्दी आई है कि नहीं आई है, गर्मी गई है कि नहीं गई है मुझे जरूर बताएं, या दोनों आपस में टकरा चुके हैं ये भी जरूर बताइएगा। और साथ में आपने जो मुझे जवाब दिया है ठीक है, और अगर आप सॉन्ग का नाम बता देंगे तो वेल इंक्लूड हो जाएगा, सॉन्ग का नाम आप मुझे बता दें, चप्पल अगर आपका जवाब ठीक होगा आपका सॉन्ग चल जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि जी आप जीत गए हैं। और मसरूर अहमद आप भी आपने बताया ओके जी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पर एक और सॉन्ग प्ले करेंगे जो कि वो भी मेरी पसंद पर ही है वो सॉन्ग, तो उस

उस सॉन्ग को कर दिया मैंने प्ले और सुनूंगा, सुनते हैं साथ में एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग यार। ड्रामा तो स्टे भी बेस्ट है लेकिन सॉन्ग तो बहुत ही असम यार।

0: नमस्कार जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुन रहे थे इश्क है ड्रामे का ओएसटी सॉन्ग, और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो मैंने सोचा यार क्यों मैं अकेले सुनूं, हमेशा आपको पता है कि कोई भी चीज़ मैं अकेले नहीं सुन रही थी, हमेशा आप लोगों के साथ सुन रही होती हूं। तो मैंने कहा आज भी क्यों मैं अकेले कोई सॉन्ग सुनूं, तो हमेशा की तरह आज मैंने आप लोगों के साथ सुना है। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास होता है एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का। जैसे हम न्यूज़ ब्रेक पर भी जाना जरूरी है यार, पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हाल चाल है, क्या नहीं है। जैसे आप अपना तो बता नहीं रहे थे, तो दुनिया की तो खबर हमें नहीं चाहिए ना न्यूज़ सुन के। तो हम लोग अभी जाएंगे न्यूज़ की तरफ, लेकिन घबराना नहीं है, परेशाना नहीं है। और आपने क्या करना है कि आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब सब तक सोच लेना है, और जब मैं वापस आऊँ तो आपने मुझे जल्दी से कमेंट कर देना है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अपने पसंदीदा सॉन्ग बता दूंगी और सॉन्ग का नाम भी चला दूंगी, और जिससे मुझे कमेंट किया उनका सॉन्ग प्ले कर दूंगी, और मैं अपना जवाब बता दूंगी सवाल का कि भाई इसका ये जवाब था। अगर आप लोग नहीं देंगे टाइम पे जवाब तो कर रही हूँ मैं आप इंतजार। जी मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने जैसे सिर्फ इतना बताना है कि उस शेर का नाम आपने सिर्फ बताना है कि जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम बनता हो। इतना आसान सवाल है, और स्कूल में हम इसको पहले बना बना के पूछा करते थे, तो ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को याद भी होगा जी। तो यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर एक छोटे मुझे ब्रेक की तरफ जाने का और न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का। तो न्यूज़ सुनेंगे, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें।
1: It's 12 p.m. This project is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sachal ki sarmast dharti.
3: Fatiha Mehran. Sindh ki ek aur pehchan.
2: GAFM 88. Ab aap sunenge. GAFM Network par. KTN.
4: जख्मी आपघाती बम्बार बारूद से भरल गाड़ी के दराजान में अमन मिला चौक चेक पोस्ट से टकरायो। शहीदन में 6 पुलिस अहलकार, एक कस्टम ऑफिसर, बिन औरत न एक बार भी शामिल। जख्मिन के खड़ी वेंदर एम्बुलेंस से भी फायरिंग बज, रजाकार शहीद, 3 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी ए बियन पारा चेक पोस्ट से हमले की मजामत। इंसानी जान के नुकसान से दुख जो इजहार, दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के वारे अजम जो वर्जा। ईरान के तजीजन से अमेरिका का बाजाबता तुरंत जवाब जो इंतजार। ईरानी परदेही वजीर अब्बास सिराची है तो अमेरिकी सदर जो शुरुआती रद्देमल डिठो है, पर ट्रियाकड़ी कंदड़न जरिए जवाब न मिलो है। ईरान ट्रियाकड़ी कंदड़न तरफा हतमी मौकव जान जो मुंतजर है, इन ही बुनियाद से असि फैसलो कंदी। ट्रंप पारा अमेरिका में मिडटर्म चूंडन का बीहर हमलों इशारो किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी बाबत ईरानी तजीजों रद्द करने की तस्दीक कदे ट्रंप है तो ईरान जंग हारा रो है, आबने ऑरेंज में खोलने तैयार थी वो है। मां पान मुआदो कर चाहें तो ईरानी डील कबूल ना है। ट्रंप बीहर आबने ऑरेंज के ट्रंप स्ट्रीट जो नालो दई छो। तस्वीर समाजी वेबसाइट से जारी कई वही है।

सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद खां कराची पहुची वियो। संदस सदारत हेठ पीपल्स पार्टी जो इजलास जल्द थियण जो इम्कान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर सरफराज भुक्टी बि कराची पहुतल। इजलास में सियासी मामलनि समेत नवनि सूबनि जे मामलनि ते अहम फ़ैसलनि जो इम्कानु।

0: कार पनो अकल बरसा सदूजा थाने वटा मिली आए। वारसन जो चवण आए त कार जे शीशे के रत लगल आए। हैदराबाद में व्यापारी नरेश कुमार के पैसन की डेती लेती तां कतल करण जो इनकशा पुलिस पारा ब मुख जवाबदार गिरफ्तार करण की दावा। पुलिस जरियन मूजिब नरेश कुमार के कतल केस के बिन मुख जवाबदार के टंडरोल यार मां गिरफ्तार किया वो है। जरियन मूजिब मकतूल के कर्ज वापस देने के बहाने घुराए कतल किया वो। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में दरियान के आलमी दिहाड़े ते सिंधु के तहफ़ुज़ लाइ तकरीब
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 315 109 03000 515 09।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: बुक स्टूडियो Season 14.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: Wow.
1: तो वाह, बहुत खूबसूरत सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे, नो मेकअप हाई हिल्स। तो जी, अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फेमस सॉन्ग बहुत सारे जमा हो गए हैं, तो यहाँ पर अभी एक और हम सॉन्ग प्ले करने वाले हैं फैज़ अली की आवाज़ में। ये खूबसूरत सा सॉन्ग है जो आप लोग भी सुनेंगे और हम सब सुनेंगे मिलकर। तो फेमस सॉन्ग तो जी कर दिया ये सॉन्ग प्ले।

तो जी आप सुन रहे थे हम लोग मजे का सॉन्ग फैजल की आवाज में. सॉन्ग कोई सा भी हम सुनते हैं, इनका उर्दू वाला सॉन्ग सुनते हैं, संदेश स्पीकिंग सॉन्ग सुनते हैं, बहुत ही कोई लाजवाब सॉन्ग होते हैं. मतलब अच्छा लगता है सुबह का आगाज जब लगता है अभी. बहुत ही कोई लाजवाब सॉन्ग होते हैं, मतलब अच्छा लगता है सुबह का आगाज जब लगता है अभी हुई है सुबह हमारी. तो यकीन आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा.

0: हूँ तो आप जरूर सुनाइएगा। नहीं जरूर चौके जी, मेरे पास टाइम होता है तो मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एक कोर टाइम होता है छोटे से छोटे कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का। अभी हम जैसे ही ब्रेक पर जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे, तो वापस आके मैं आपको जरूर पोएट्री सुनाती हूँ, आपको अपनी तरफ से एक पोएट्री सुनाते हैं हम, और रहिएगा मेरे साथ, थैंक यू सो मच मेरे साथ होने का, और मजे मजे के सॉन्ग भी सुनेंगे। उसके बाद टाइम वैसे ही पता है आपको कि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, सिर्फ आधा घंटा बचा है मैंने, तो बाकी जो हैं बातें बहुत सारी हो जाती हैं रहती हैं, और बातें ख़त्म नहीं होती, टाइम ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही है कि काम ख़त्म नहीं होता, इंसान ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे ही बिल्कुल जी। तो मैं आकर जो है अपना सवाल का जवाब आपको खुद बता दूंगी, और सिंगल सॉन्ग अब मैंने आपके प्ले कर दिए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे उसका क्या जवाब है, लेकिन मैं आपको जवाब आपको आपके अभी ज़रूर बता देती हूँ। हम यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके बताऊँगी अपने सवाल का जवाब। जब तक रखना है अपना बहुत सारा ख्याल रहेगा मेरे साथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट ॿुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज़, फालिज, खंघ, TB, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, हेपेटाइटिस BC, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002।

0: 7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजहर स्कूल सिस्टम, मेहरापुर। 03013865453।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
5: हाँ साईं गाल भी एड़ी आहे।
4: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे।
5: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
4: छा छा?
5: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हिय चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थियन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
4: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
5: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच।
4: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
5: हा साईं हा।
6: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग सॉन्ग, और एक और सॉन्ग हमारे पास मौजूद है जो कि फरमाइश पर है। तो जी यहाँ पर सॉन्ग एक और सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे छोटे से शॉक कमेंट ब्रेक की तरफ। तो इस सॉन्ग को सुनते सुनते हम चले जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कर दिया सॉन्ग को मैंने प्ले, सॉन्ग को भी करते हैं साथ में एंजॉय। क्या

जो कि शामन अरी मुरारी की आवाज़ में हमें एक फरमाइशी सॉन्ग था, तो जो हम प्ले करेंगे लास्ट में चलते जाते। और इसके अलावा मैं बताऊँगी जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है और आप लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं हबीबुल्ला ते वो सॉन्ग बदराई जो तुम, हम तुम्हारी राह देखेंगे। अच्छा अच्छा, हम तुम्हारी राह देखेंगे, हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, लेकिन आपको बहुत देर हो गई है हमारे शो में आते आते, तो जनाब आप कहाँ थे, आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था कि आप हमारे शो में आते तो हम जल्दी हम आपको सॉन्ग प्ले करते। खैर कोई बात नहीं, हम अगली दफ़ा ये सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे हबीबुल्ला, और तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, लेकिन आपको भी कसम है कि नेक्स्ट संडे आपने क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल टाइमली ज्वाइन करना है। अगर आप लोग मुझे देर से ज्वाइन करते हैं तो जी यहाँ पर आपको पता है कि वो हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम ज़रूर इंशाल्लाह भी प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पर चले एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, उसके बाद इनका सॉन्ग भी हम आज प्ले करते हैं, कोई बात नहीं, आपने मुझे आज ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा, तो करते हैं आपका सॉन्ग भी आज प्ले, और ये वाला एक सॉन्ग प्ले करते हैं, सुनते हैं इस सॉन्ग को भी।

0: तो जी यहाँ पर हम लोग अभी एक और सॉन्ग प्ले करेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा ये बहुत कब्जा सॉन्ग हम सुन रहे थे शमन अली मुलाली की आवाज में, और आप लोगों ने भी मेरे साथ ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कहते हैं अब्दुल अली ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सिस्टर सना, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपका कि आपने मुझे ज्वाइन किया। ऐसे ही आप सारे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगले इतवार को मेरे साथ टाइम मुझे ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास अल्लाह हाफिज करने का। तो यहाँ पर करते हैं जी अल्लाह हाफिज, एक सॉन्ग को लास्ट में प्ले करते जाएंगे, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, जैसा कि हमें फरमाइश आई थी अभी हबीबुल्लाह की तरफ से, और लाड़काना साहब मुझे मैसेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया है हबीबुल्लाह। ऐसे आपने नेक्स्ट संडे आपने क्या करना है, मुझे टाइम भी ज्वाइन करना है और मेरे सवाल को सुनना है, मेरे सवाल का जवाब भी देना है, और आपने साथ में मुझे ज्वाइन करने के साथ साथ मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बता देना है जिसे आज बताया था। तो अगर मैं वो ठीक होगा तो मैं प्ले कर दूंगी, वैसे ही मैं आपको प्ले करूंगी, आप मेरे जो है न्यू लिसनर है तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैं आपको सॉन्ग प्ले करूंगी, आप मुझे जरूर अपने पसंद का सॉन्ग का नाम अगले इतवार करूंगी मैं आपका इंतजार, और मिलते हैं अभी अगले सेगमेंट में अगले इतवार को। जब तक रखना है आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल, जब तक अल्लाह हाफिज है, और इस सॉन्ग को कर दिया है मैंने प्ले, इस सॉन्ग को करते हैं साथ में एंजॉय, अल्लाह हाफिज।
1: तीन बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसमें झटका सा महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि

0: केपीजे इलाके डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट बरसा आपघाती हमले में शहीदन जो अंग 13 थी वियो 35 खां वधीक जख्मी आपघाती बमबार बारूद सा भरल गाड़ी के दराजान में अमन मिला चेक पोस्ट सा टकरायो शहीदन में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर बिन औरतुन एक बार भी शामिल जख्मियों के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस से भी फायरिंग कई वही ब रजाकार शहीद टे जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ घरू वजीर मोहसिन नकवी ए बन पारा चेक पोस्ट हमले की मजामत इंसानी जान के नुकसान से दुख जो इजहार दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम ज वर्जा ईरान के तजीजन से अमरीका का बाजाबता तौर जवाब जो इंतजार ईरानी परदे वजीर अब्बास सिराची है तो अमरीकी सदर जो छुराती रद्द अमल डिठो है पर ट्रियाकड़ी कंदड़न जरिए जवाब न मिलो है ईरान ट्रियाकड़ी कंदड़न तरफा हतमी मौकफ जान जो मुंतजर है उन बुनियाद से असि फैसलो कंदासी ट्रंप पारा अमरीका में मिड टर्म चूंडन का बीहर अमल जो इशारो दिनो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद जड़ना पहरियो कदम वधायो
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03-000-31-05-109-03-00-31-05-109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और 4D ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03-00-335-69।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03-01-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: तुम्हारी उम्मीद माचिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए धंधड़ तमाम खूबसूरत मासूम सोने समात, उनकी मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुरे दुआओं के समंदर, चाहती की बारिश और खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नीचे जाकर जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत, चांद से तारों तक, से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सखरन, मेहरापुर, मातली, गोरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होंगी जनाब। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें इसलिए होने वाली है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करने वाले हैं। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में किस तरह से जो है वो जान ला देगा, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा और किस तरह से आपकी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए लॉक भी कर देगा, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें आप लोगों को मालूम पड़ेंगी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि भाई हमें क्या चीज ट्राई करनी चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर साबित होंगी और कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए सही साबित हो सकती है। ये तमाम चीजें अगर आपको कोई और नहीं बताता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे और बताएंगे भी ऐसे कि आप समझ जाएं कि भाई आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें आपने अपनी स्किन के लिए जरूरी जरूरी करनी होती है। ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद ही जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और खूबसूरती की जरा बातें बताएंगे कि भाई किस तरह से आप खूबसूरत रह सकते हैं और किस तरह से खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने पास भी रख सकते हैं। और चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, तो परेशान क्यों होते हैं भाई जान, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा गया और हर तरह से आपकी जो है ना स्किन को प्रोटेक्ट किया गया है, हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बनाने के चक्करों में है ना। तो आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होने वाले हैं वो सब कुछ बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले। तो इन्नी शाली बातों के लिए जरा रेडी शेडी हो जाइए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्र आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारे से कलाम जो कि हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होने वाला है जी प्ले। और कलाम सुनते ही कलाम के जैसे ही उस पार आप लोगों से मुलाकात होगी तो आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं।

खूबसूरतीअ जो असल राज़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

ओके जी, आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जनाब, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, हमारे एरिया में तो मिलते ही नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आप लोग जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे और कहां से जाकर आप जो है ना परचेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अवेलेबल भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, सब बातें की जाएंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाए कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और नहीं भी पता है तब भी बनते जाइए, क्यों कोई मसला नहीं। आपको टॉपिक का जवाब आ रहा हो या नहीं आ रहा, लेकिन ये बात है कि भाई तुकाई मार लिया करें, टॉपिक को जरूर से फॉलो कर लिया करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज ही जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि मर्द को भी खूबसूरत बना देगा वो डर है ना, तो औरत हो या मर्द दोनों ही खूबसूरत हो जाएंगे। आप मुझे बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं और जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से नंबर्स को जरा नोट कर लेना है, जो नंबर में अभी आप लोगों को बताने लगी, नंबर को जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं और आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मिलना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0332738439। बड़ी 3384 योर नंबर आहे 0312502597। बुरी 312 9070 ही नंबर्स आहिनि जेके डायल करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। भले तव्हां दुनिया जे कहिड़े बि कोने में मौजूद आहियो, किथां बि तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो था, हर जॻह ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। बस इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव ऐं असां इस्तेमाल करण चाहियूं था, बराए महिरबानी असांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वञो, त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। छो त वैसे बि तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, ही बाबा पोतल प्रोडक्ट आहे, पोतल सां मुराद इहा त ही सिर्फ़ न सिर्फ़ तव्हांखे पूरे पाकिस्तान में मिलंदो, बाक़ी ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली सघे थी, छो त ही हिकु इंटरनेशनल प्रोडक्ट आहे ऐं तव्हांजे लाइ इस्तेमाल करण जा होर सारा हिन जे लाइ वजूहात मौजूदु आहिनि। त तव्हां छो इस्तेमाल कंदा, छो त बाबा अहिड़ो प्रोडक्ट हाणे मार्केट में अची वियो आहे, तव्हांजे लाइ बि मार्केट में अवेलेबल आहे। जेके माण्हू सोचनि था त बाबा असां महांगा महांगा प्रोडक्ट अफोर्ड नथा करे सघूं, असांजी जेब असांखे इजाज़त कोन ॾींदी आहे, त तव्हां हाणे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ करे सघो था, जेको तव्हां इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे रियलाइज़ थींदो त बाबा वाकई ही अहिड़ा प्रोडक्ट आहे जेके असां हमेशह खां इस्तेमाल करणु चाहियूं पिया, ऐं असांखे ख़बर नई, कोई गाइड न पियो करे या असांखे कोई ॿुधाए कोन पियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि मार्केट में अवेलेबल आहे। चलो हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो, ऐं तव्हां वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो परचेज़ कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे यूज़ करण स्टार्ट कयो, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो।
बिल्कुल सुना, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, मर्द को भी खूबसूरत बनाता है, हाँ जी दोनों को खूबसूरत बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नजीर कोसो भाई ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, बलूचिस्तान से आप हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो, क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर तमाशाई बढ़ा लेते हैं, हम दर्द नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फरवा हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपकी तबीयत कैसी है? होप यू आर फाइन एंड वेरी नाइस। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक है। और बरकत रमादानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं। जी आप भी हमें बलोचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? मैंने तुमसे मिले बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें छुए बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें देखे बगैर तुमसे मोहब्बत की है। क्या बात है भाई जान, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। फरवा गुल हमें सुन रही है, आप ही अर्ज किया है, हम तो आज भी आपको याद करते हैं, तुम भूल गए। अच्छा तुम भूल भी गए, ये कमाल है। हाँ जी वाह, की बहुत बड़ा कमाल है। और कहती है रिक्वेस्ट है जोड़ा आसमानंते ठंडायन बाय ममताज मौलाई डेडिकेटेड स्पेशली आप और तमाम लिसनर्स के नाम। चले मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और दिया हमारे साथ हैं, दिया क्या कहती है? दिया ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान, कैसी आप? उम्मीद की अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी। जी जी। और कहती है कि हम भी आ गए आपके शो में, प्लीज प्ले निगत नखरा छुना मकया डेडिकेटेड स्पेशली रिमशा उरूसा हिरा एंड डेविल। ओके ओके। अच्छा फहीम भाई हमें सुन रहे, कहते कि नजर जी नजर के नजर न लगे कोई सुठो भी हिन कदर न लगे, तोखे डिठो आहे हिन नजर सां या हुन नजर हिन ही हुन में थोड़ो मां कंफ्यूज थी वेंदी आहियां। कहते कि जे नजर सां तोखे नजर न लगे। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मौलाले सलामत। कहते अदा छा लाइन खुशायो सफा चाक स्लेट कल मस्ती डबी हाओ, असा भी अची वयासीं प्रोग्राम ते लाजवाब है हमेशा जी अवां वांगे। थैंक यू सो मच प्यारा सोना भाव, पोस्ट के लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब्दुल गुलाम कैसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, हैदराबाद से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू। मुख्तियार अली लाशारी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? और फरवा कहती हैं लाइक और शेयर कर दिया आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। फहीम भाई आपने भी कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ हैं, हली पोटो स्टाफ खान तमाम से प्रोग्राम उधो पाया, थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद राशिद अमान हमारे साथ ही, सिस्टर सिद्रा मुस्कान खुश रहे आमीन, आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं बस इस काबिल हमें समझ लेते हैं, वरना ना चीज इस काबिल का। ऐसे नारबाणी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाले सलामत, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसियां? वेलकम कहते हैं दिल से आपको, गुर्दों से वेलकम कहते हैं। हजार भाई भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई। और ऐसे ही आप सब लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है, जरा हम जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और मुझे ना ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किस किसने किया, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर नहीं, ये भी मुझे बताइए। और टॉपिक को फॉलो करते जाइए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे।

0: 8894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300311 8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
3: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
6: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तदरीसी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन अकेडमिक ब्लॉक जो इनकाद मेहनती मशाक तजुर्बेकार तदरीसी अमलो सरसब्ज बागीचो बाइक कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियूं ऑडियो विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी इंग्लिश से खसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान उते मुनक़िद मुकाबला तहरीर तकरीर ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000002724 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको जो खूबसूरती मिलने वाली है उसके बारे में जरा बातें की जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए 8881 पर और फेसबुक पर। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। इससे ये होता है कि भाई हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप मर्द हजरात हैं, अगर आप खवातीन हैं, तो हर कोई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकता है। हुई ना मजे की बात। तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि भाई आप लोगों को आज पता चलेंगी या फिर पहले से पता है लेकिन आप जरा बुढ़े तरह में आयो तो असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी चाहूँ या फिर न वठी चाहूँ। बाबा तहाँ बिना सोचे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करने स्टार्ट डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको इस्तेमाल आए ना वो तुम्हारे खूबसूरती जो ढो फायदेमंद साबित थी। तुम्हारा दुनिया में बेशक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देखे होंगे जो कि आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको वक्ती तौर पर खूबसूरत तो बना देते हैं लेकिन जब आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करना छोड़ देते हैं तब आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब हो जाती है। आपके चेहरे पर जो निखार आ चुका होता है वो कहीं गायब हो चुका होता है और आपकी खूबसूरती जो है ना वो मानन पड़ जाती है। बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती है जो कि भाई आप नहीं चाहते कि भाई ये होनी चाहिए। तो अगर आप भी इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं और कोई अच्छा सा कोई सेफ सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी स्किन के लिए ही है जनाब। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस वजह से नहीं इस्तेमाल करेंगे भाई हमारी स्किन खराब हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन बात तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला है तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर कि भाई हर स्किन वाला इंसान इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई तैयार की गई है उन डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि भाई आपकी स्किन के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तो ना बिल्कुल वही डॉक्टर्स उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। और इसका फार्मूला जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा फार्मूला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करते हैं ना तो ये है तो बेसिकली एक नाइट क्रीम लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ऐसे वाले जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। और इसके अंदर जो है विटामिन ए बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन है और जनाब अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। नाम सुनकर ही आपको एहसास होता होगा कि भाई वाकई ये तो कोई महंगा सा प्रोडक्ट लग रहा है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ये इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है। आप सारे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी शानदार सी खूबसूरती जिसकी आप हमेशा से जो है ना वो कल्पना करते थे, हमेशा से आप चाहते थे कि भाई हमें भी काश ऐसा हुसन मिलते लेकिन कैसे मिलता, तो वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स जो है ना ये आपकी खूबसूरती में इस तरह से इजाफा लाने वाले हैं जो कि आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, जो खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल्स कराती है ना उनके फेशियल्स के अंदर ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एड किए जाते हैं तभी उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं और इसी के साथ साथ ये मुनासिब कीमतों में भी आपको मिल रहे हैं और आपका टाइम भी इतना ज्यादा वेस्ट नहीं होगा कि भाई आप क्या घंटों बैठकर पार्लर जो है वो फेशियल कराते रहे। बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे आपको मिलेगी ऐसी शानदार सी खूबसूरती जिसकी आप सपने देखते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं हर कोई कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल हर एक स्किन के ऊपर किया जा सकता है, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है। तो कीजिए भाई, किसने मना किया, और खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जल्द की मुनासिब केयर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज
अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है और आपकी जल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज भी रखेगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जो है ना आपको खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है और आपका टाइम बचाने के लिए किया गया है। आपके पैसों में जरा जो है ना वो ऐसा नहीं कि भाई आप जाएं धड़ाधम बहुत ज्यादा महंगे महंगे आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं। भाई ये फार्मूला ऐसा है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो इसे आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। एक्नी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, एक्नी मार्क्स आ चुके हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रंगत का इशू है उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी की रूटीन में बस आपने शामिल कर लेना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इतना खूबसूरत सा एहसास होगा कि आप लगाने के फौरन बाद ही कहेंगे आए हाय चस करा दी भाईजान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है और मर्द हजरात हैं, खवातीन हर कोई यूज कर सकता है। बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी। ये एक छोटा सा टेलर था और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है। अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी ये बात जरा मैं आप लोगों को बताती चलूं, तो डी स्किन का जो फेस वॉश है इसको तैयार किया गया है बड़ी ही मोहब्बत के साथ, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का यूज किया गया है। हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो होता है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर जो है ना तमाम वो चीजें एड की जाती है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए होती है, मॉइस्चराइज रखने के लिए होती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होती है। तो हर दिन को अगर आप बेहतर, रिफ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश बनाना चाहते हैं और आपके चेहरे पर ये जो थकन नजर आती है, ये गर्दो गुबार जमा हो चुका है और काफी ऑयल आपको महसूस होता है कि भाई हमारी स्किन बड़ी ऑयली है, तो हम क्या करें, क्योंकि ऑयल को ज्यादा जो है ना आप बहुत सारे प्रोडक्ट लगा चुके होते हैं लेकिन ये ऑयल आपके चेहरे से जो है ना वो ज्यादा ही नहीं है। और ऑयली जिन लोगों की स्किन होती है जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम भी आ चुका होता है। तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा तरोताजा रखने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश बिल्कुल जी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट साबित होने वाला है। आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख़वातीन हैं। तो इस्तेमाल करती रहिए और जरा खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप अपने इजीली किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल जी आप डायल करेंगे नंबर्स जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। नंबर्स को डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो वो अवेलेबल हो सकता है और आप वहाँ से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50 पंजवीह 970 एंड बियो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73 84 309 ही नंबर्स तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा ऐं उतां वञी ईज़ीली परचेज करींदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हांजे खूबसूरती में आणींदो बाबा चार चंड। सो तव्हां बि अगरि खूबसूरत थियणु चाहियो था, खूबसूरती जी दुनिया में क़दम रखणु चाहियो था, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी करे ॾिसो। ओके जी, हुन खां अलावा तव्हांजा मैसेजिस आहिनि, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि जंहिंजे तरफ़ बिल्कुलु असां अचूं था, लेकिन मां अॼु अव्हां खां सवाल पुछियो आहे, उनजो जवाबु तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा हलो। सवाल इहो आहे, उहो कहिड़ो डर आहे जेको औरत खे ऐं मर्द खे ख़ूबसूरत बणाए छॾींदो आहे? हां जी, वो कौन सा डर है जो औरत हो या मर्द हो दोनों को खूबसूरत बना देगा? अब आप मुझे बताइए वो कौन सा डर है आपकी नज़र में। और इसी के साथ साथ मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे से गाने भी मौजूद है, तो आइए जरा गाना सुनते हैं और आप क्या कह रहे हैं आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं। पोस्ट को लगे जरा लाइक और शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

अच्छा भाई, मैंने अभी देखा तो आपके जो पहले वाले मतलब पहले पहले वाले कमेंट्स है ना, वो तकरीबन ही ऊपर चले गए हैं, तो मैं जरा देखती हूँ जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं। और हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ कहते हैं कि जवाब सोचिंग के बाद ये जवाब आया कि खुदा से ओके ओके ओके। और हजार भाई कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है, योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। वहीं भाई आपने लिंक शेयर कर दी है ओके, मैं आपका गाना लगाती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र किया करे। और निदली हमारे साथ कहती है मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें था AI कुछ सालों के बाद इंसान मार देगा, अब ये क्या सच है, लग तो रहा है। अच्छा वहीं भाई कहते हैं दादा क्या सर खाले जुड़े जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल जी चाचा को तो जरूर यूज करवाइए भाई। और अनवर भाई हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तबीयत सही आहे न मुर्कन सा सजायल ही जिंदगी जो पंध, खुशिन जो गुलाब पियो मुर्के सजो हंद, दुआ आहे तो हमेशा यही रहन आबाद, कहीं खे भी न अचे कोई दिल ते बंद। वाह सही वाह वाह सही वाह। हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिर्फ आज कोई अपनी पसंद का, चलिए AI का, सही सही सही मैं लगाती हूँ भाई। हजार भाई AI के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं। सही है भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे। और तबीयत मेरी काफी बेहतर है, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। निदली कहती है कि पोस्ट पर चैट नहीं करो, आप लोग हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं, ये बिल्कुल यही रीजन है, जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं बंडल ऑफ थैंक्स बेटा। अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताएं तो। इंतजार अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओके, तमाम के बीचों था भली करी आया। चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है, मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं, डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा देंगे और आपके चेहरे पर चार चांद लगा देंगे, तमाम चेहरे जो ऑयल भी कंट्रोल थी वेंदो, तमाम खूबसूरती में भी इजाफो अची वेंदो।

पहिरियां अंगुल छॾियां पेर पोइ रखिजां पंहिंजी गाॾी मां पेर पोइ रखिजां अच्छा वफ़ा शहज़ाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीब आबाद मोरी खां तव्हां असांजो प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मोहबतूं प्यारे सोने भाजू और इंतज़ार भाके ते टॉपिक पढ़दा हया और शर्म ओके ओके जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहते नाइस यो मैम आरजे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी असां नानाणनि जे घोट वेठा शिकारपुर वारा माण्हू बि बार टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कनि पिया ऐं शिकारपुर में बि हर जॻह ते टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे मां पुछा कराई बिल्कुलु मूंखे इहा ई ख़बर पई त बाबा टी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफ़ा ज़ोरो शोरो से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वाले लोग हमें सुन रहे हैं टी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं

नखरा कयो तव्हांखे बि फुल मोकल आहे पर पंहिंजा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ठीकु आहे पोइ तव्हांखे नखरा बि ठहंदा जी अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आबासी आपने हमें ज्वाइन किया है जबरदस्त कंपेयरिंग बहुत शुक्रिया थैंक यू खुश रहें आप भी और जी अनवर भाई हमारे साथ हैं

अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि उस्ताद शागिर्द का पुछो तो बुधाए शादी ऐं जंग में केड़ो फर्क आहे। शागिर्द एकदम जवाब दिनो, उस्ताद महाजरम जंग में दुश्मन सा समझौतो करण जा कुछ मौका मिलंदा आहिनि, पर शादी में को भी समझौतो नथो हले, उते सिर्फ गैर मशरूत शिकस्त तस्लीम करणी पवंदी आहे। केॾा त सतायल आहियो अला तव्हां सभु। जी जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, निगत नाज आ चुकी है, एंजॉय कीजिए निगत नाज को। और मुगल उमरानी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, स्टिकर सामने शेयर कर दिए हैं। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम, अदी सदरा बिल्कुल ठीक ठाक आई तमाम चेवा, अल्लाह पाक तमाम के खुश रखे, हमेशा मुस्कुराइंदा रहो, माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन लाजवाब। कंपेयरिंग गोठ आगा खान जतोई लाड़काने खां मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सर जतोई, तमाम भाव जो मोहब्बत प्रोग्राम के पसंद कर पाया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर बाबा जी, स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे खूबसूरती मर्द हजरा तमा खवातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था आई फायदो हासिल करे सको था, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई सुना सुना थी वन्यो।

अच्छा अली रजा लगारी भाई हमारे साथ है गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी भाई सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका शो तमाम नाई से सॉन्ग हाले। अच्छा चलें ठीक है ठीक है, ये गाना आपको सुनाएंगे और कहते हैं प्लीज प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारे। सिस्टर हमारे गांव में ब्यूटी क्रीम नहीं मिलती है, आप बोल रही हैं सिस्टर। अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ, तो जो नंबर आपको बताया ना बिल्कुल उस नंबर के ऊपर आप राबता करके अपने गांव में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से नंबर के ऊपर राबता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइएगा और नाम जरूर उन्हें बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम अवेलेबल कराना चाहते हैं। भेज दीजिए आपका गाना भी लगा देंगे। अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए नहीं ऊपर चले गए। जी फहीम आपका जवाब मैंने देख लिया था और शायद पहला जवाब आप ही का था। रमेश ठाकुर हमें सुन रहे फ्रॉम सुल्तानाबाद। ओके रमेश भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच के साथ। चलिए जी यहाँ पर आप जरा हमारी पोस्ट पर बने रहिए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जी हम जरा न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. असली ग्लो हर निया जोशो। A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News. अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.

मी दिहाड़े ते सिंधु जेता फजल आए तकरीबू ऐं एहतजाज सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंधु तो में सावा मुंहिंजो जे उनवान सां ठुल बॉडर कोटड़ी ढोरो नारो सकरंड सेवण नवाब अली मोहम्मद जोई ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा अॻवाणनि चयो त सिंधु दरिया कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो।

0: गुजरियल राति हथियार बंदनि जी फायरिंग में क़तल थियल 15 वरनि जी नींगरीअ जो लाश रखी धरणो वारसन ऐं सवें शहरनि मक़तूल नींगरी मुर्क मेमण जो लाश रखी पिंजारी पुल चौक ते धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरीन जो बिना देर नींगरीअ जे क़तल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
3: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर 03000-3385-69।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा, छो परेशान आई?
6: अदा, नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा, दुकान जी मशवरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
6: अदा, जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

अच्छा हिकड़ी गाल याद अची वई पर छॾे सहाली कोन थी ॿुधायां मां. अच्छा अगरि तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो. यहां पर पैनल की जानिब आते हैं तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी बहुत ज्यादा वाले, तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं. और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है वरियाम अली जतोई.

ओके जी, वरियाम लिखते हैं कि सिद्रा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक्का सा सलाम था कयूं इन वीआईपी सफा शो आहे, थैंक यू वेरी मच वरियाम। और हमारे साथ जी गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आए, सलाम तवां के, वालेकुम अस्सलाम तवां के प्यारा भा। हबीबुल्ला थेबू कहते सॉन्ग बुधराए शमन मिराली जो, दो शमन मिराली जो गानो बाबा। और ये हमारे साथ है माहीन, आज एंजल आई है, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं टॉपिक। अच्छा ये आपने शायद गाना भी लिख दिया है, ओके जी ओके माहीन और एंजल आप सबको हम वेलकम कहते हैं, आप सब परियों को खुश आमदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और खूबसूरती में जरा इजाफा लाइए, ठीक है। और हमारे साथ ही चाचा खालिद कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, मां कोशिश क्या थी तांजो गानों बुधूं था, ठीक है। और असद महर हमारे साथ ही विलेज हाजी दिलबर से, असद महर भाई आपको वेलकम कहते हैं। उनके अलावा अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं जी मीरपुर खास, अब्दुल्ला महर भाई थैंक यू सो मच, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और जी मायरा हमारा शो सुन रही है, मायरा को वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही है मायरा, इस्तेमाल करते रहिए जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने इसीलिए तो हर जगह अवेलेबल करा दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम अदर, अच्छा मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ है मीरपुर खास से, कहते हैं बहना ना करें भाई ना करें, ऐसी तो बात नहीं है। वैसे वाकई आपको ऐसा लगता है, सच्ची बताए ओके जी, मुनव्वर भाई खुश रहें और बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कीजिए, आप फेस वॉश का तो कर ही रहे हैं। असा ही आयो प्या था चू बाबा वांदो उंदो वाके वाके सुन ता सही था चो। अच्छा निदड़ी आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया है, ठीक है जी ठीक है। मीर ममताज अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, लाड़काना का तमाशा के ज्वाइन करा मीर ममताज अली जतोई, एस ममताज जतोई ओके। चाचा कहते हजार खान आपकी पसंद पर एआई जनरेटेड सॉन्ग, हाँ जी वो सुनना चाहते हैं, हम उनको सुनाएंगे रिजवान अली हमारे साथ है, कहते बहन कैसी हैं आप, नाइस शो है, सॉन्ग सुनाए खुदा और मोहब्बत का प्लीज, मैं ट्राई करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और मुगल उमरानी भाई हमारे साथ है, थैंक यू और निदरी कहती है कर कर नखरा हाजिर साई नखरा कंदा सी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो हणंदा आहियूं। और महर इरफान सियाज साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। हजार भाई कहते हैं हजरत अली का कॉल है, जो चीज मुश्किल से मिलती है वो देर तक चलती है, क्या बात है क्या बात है। दिस इज गलत बात भाई निदा, मुझे समझ नहीं आया था कि ये सिटी का नाम था ये या इंसान का नाम था, आई डोंट नो, बस लोग मैसेज कर देते हैं मैं वैसा के वैसा पढ़ देती हूँ इंतजार भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। इकबाल लाशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया। और अबू हनीफ अलबलोची कहते हैं ममताज लाशारी का गाना सुनाए, मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और फरवा कहती है आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है, दिल बच बच बच यू गानो बुधो सैया सैया हाजिर हाजिर। और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम कहते हैं वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू जी थैंक यू। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कया वो न मुखे इो तो बुधायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करने वारा मानो हथ तो मथे कयो, कमेंट में एक दफा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो लिखो।

ओके जी डे स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वठी चो हाने तो देर न कर जल्दी वन बाबा जल्दी वन डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आ और ताले मरी समारोह भाई में सुन रहे हैं ताले मरी भाई तां सु मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम बुधो पया आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हेलो अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ है बतूल बिल्कुल आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया कहती अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी आवाज कोयल की जैसी है कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था मुझे मिला नहीं था तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे ठीक है जी बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं फिर मुझे मनाना नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना सुन लिया अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए अली रजा लगारी तां सगर मौजूद आए थैंक यू

ஒரு மாதம் ஆகிட்டு வந்தோம் பாபா, டீஸ்கின் பியூட்டி கிரீம் வெட்டி அச்சு. அண்ட் டீஸ்கின் ஜோ ஃபேஸ் வாஷ் பி வெட்டி அச்சு. अच्छा फहीम कहते वरी भी सागी कार चवाए तो अदास सिंधी में हिको हिको अंग करे बुधाए मां बैराड़ी जो अन पढ़ियल मानू आया सफा सादो नजर न तो अच्छे छा नजर अन्या तो कोन आयो बियो बियो ब्रेक हां पो मोटी चांदी पोदा के हिक हिक करे मां नंबर बुधाया दे ठीक है तमा नोट करे वट जो आई पो तमा डीस्किन जो फेस वॉश एंड डीस्किन जी ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए जो ठीक है सो हानी ताए ते वे हो मां ते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठा थी पो जल्दी मोटी चांदी ता काडी नवन जो इते बैठा जो ओ ही मनी ओ ही मोटों दा सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डीस्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद

0: 201800003.
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोज मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
0: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

क्या बात है, वापस आ चुके हैं जी दोबारा से हमारे लास्ट और सैडी लिंक में. कहते हैं ना सिद्रा के प्रोग्राम का जो लास्ट लिंक होता है वो सैडी लिंक होता है. वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जितने भी आपके सैडी वाले गाने होते हैं उठा के भी लास्ट लिंक में फेंक देती हूँ. मैं कहती हूँ ये सारे तो हम लास्ट लिंक में ही सुनेंगे. तो बिल्कुल आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जरूरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऊट पटांग वाले प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा के देख लिए हैं, लेकिन अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है. और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए 2-in-1 फार्मूला भी, यानी कि आप लोगों के लिए नाइट क्रीम तो हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आप लोगों को फेशियल वाला रिजल्ट मिलता है. फेशियल ऐसा वैसा बहुत महंगा वाला फेशियल, बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है. ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दोनों जो चीजें ना बहुत प्रीमियम है, बहुत खास है और ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है. अगर हम बात करें यहाँ पर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट है जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को एड किया गया है. तो इसी वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटी है ना वो इतनी बेस्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा. तो मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. एक और मजे की बात है कि भाई इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती की बात हो और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर किया जाए बाबा ये कैसे चलेगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर नहीं कीजिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके चेहरे पर ये जो जमा हो चुके होते हैं ना एक्नी प्रॉब्लम्स या फिर आपके चेहरे पर जो ये एक्नी के निशानात होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनको आप कई टाइम से फेस कर रहे हैं लेकिन आपको का पता ही नहीं, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके उन तमाम चीजों को खत्म करना है अपनी स्किन से और आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई सिद्रा इतना बताती है तो क्यों बताती है, क्योंकि भाई गाल में दम होता है, प्रोडक्ट में भी दम आए. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो सोना सोना थी वजह.

मोगे जेड़ा सिंगार कया थई सवा कुंवार लगे थी यही ता के कुंवार लगन जी जरूरत ना है पर बस ता इनन सिंगारन खा थोड़ो पाण के बचाण चायो था जो तो मेकअप जने ता पाणी चेहरे ते अप्लाई करना ना मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट्स ता के मिली सगन था पर उनन सीजन की अगर तमा साइड रखो ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे साई वाह वाह थी वेंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे डी स्किन जो फेस वॉश भी तमा के मिले पयो तमा करीबी जने स्टोर से वणो ता नथा मिलन ता कोई तमा जल्दी जल्दी नंबर से राबतो करी सको था आई नंबर से की पूरी प्रोग्राम में ता के बुधाईंदी आया आई जेको मा चई वया त बाबा मोटी अचा ब्रेक खां पोए त ता के नंबर हिकु हिकु करे बुधाया थी सो ता के नंबर हिकु हिकु करे बुधाया थी ता नोट करी वठो ठीक है ओके सो पहलो नंबर आहे बुड़ी ट्रे हिकु ब पंज बुड़ी ब पंज नव बुड़ी सत आई बियो नंबर आहे बुड़ी ट्रे ट्रे ब सत ट्रे अठ चार ट्रे बुड़ी आई नव साउंड सो फनी

गानो साईं भलो हुयो, गानो वणी वयो। तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो या कोन। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद तव्हांजे चहिरे ते एॾी खूबसूरती अची वेंदी, तव्हां खां माण्हू वरी वरी पुछंदा ॿुधायो त सही ॾींहुं खूबसूरती काॾां आंदी अथव। ऐं तव्हां हुननि खे ॿुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो करे वठो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वठो। ठीक हो गया। अच्छा, ये फाइज़ा अली की आवाज़ में गाना है जो की मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने लगा ली। शायद नहीं लगाती। ॾिसो ॾिसो मां केॾी सेल्फिश आहियां। हमारे साथ है ये फजली मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आज सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर स्वीटी? मैं बहुत अच्छी, तुम बताओ कैसी हो? मजे में और दर्द दिल हमारा शो सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच दर्द दिल। और मुनव्वर भाई बस कर जाए, बस कर जाए। महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए, आमीन आमीन आमीन। और कहते हैं कुंज जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज, थोड़ो तां के अचण में लेट थी वई आहे।

ठगे रही हो बाबा। सिराज में जतोई भाई में सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाईजान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। दर्द दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया हो गया। निधि कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ ये डीओ करे।

हाँ भाई फरवा की पसंद अच्छी है, सुठा सुठा गाना फरमाइश कर दिया छोकरी। वरियाम कहते हैं सदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा। हाजिर हाजिर बिल्कुल, यो प्रोग्राम गानो मतलब तांजला शाम वाले प्रोग्राम में हलाई चढ़ींदा से ठीक है याद कंदो थोड़ो हो। अच्छा ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर, सो हम सुनेंगे। अच्छा ये आपके कमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रिमेक्स में चल गया है, चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे।

क्या बात है, टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि टी स्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए और टी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। बतूल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। रमजान भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं। अच्छा, मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर, सालार सिकंदर हमारे साथ हैं। मुमताज वाले का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और जी हैं हमारे साथ एसन, कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात थी। उस टाइम कहते ना,

अच्छा भाई, इरम की शादी, इरम को शादी वाला गाना डेडिकेट कर देंगे, ठीक है? बाकी शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है, बताएं तो उन्हें बताइएगा जनाब, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, ये मेडिकेटेड फार्मूला है और 2-in-1 फार्मूला है, तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। जी, दिमागी दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर। इस गाने की फरमाइश हमें माहीन ने कर दी थी।

बस फिर अब्दुल्ला आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए। हाँ जी अच्छा मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम वीआईपी है वो डायलॉग सुनाओ सुनो जाना मैं बोलने ही वाली थी क्योंकि इस गाने के साथ मैंने एक शायरी रखी थी। What a coincidence। मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ तो मेरे पास एक शायरी है वो जरा हम पढ़ लेते हैं।

सुनो जाना, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों। तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों। तुम मेरी नजर का सुकून हो, कोई तुम्हें देखे तो क्यों। तुम मेरी आदत हो और कोई ये आदत अपनाए तो आखिर क्यों। तुम पे जो हक मेरा है वो किसी और का हो तो क्यों, फिर कैसे ना कहूँ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो आखिर क्यों।

0: बिल्कुल हिदायत ला, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं जरा ये आरजे वारजे छोड़कर सिंगिंग की दुनिया में आ जाती हूँ। हाँ जी, आपके कानों को खराब करने की जो है ना वो मैंने जरा कसम खा रखी है तो हाँ जी समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है। फरवा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं। थैंक यू।
1: जाने तू ना जाने तेरी बाहों।
0: अच्छा नरेश भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया। हजार भाई आपका गाना रह चुका है तो वो जरा हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ तमाम से मिलूं था वेरी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 ओ हिरु से रुख यार रखना, इतने का गलती थी मुझे तो माजरत कहूं था। हाँ भाई पोएट्री थोड़ी थी मांग आई थी भैया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा, ये आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी, मुनासिब कीमतों में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सो मोकलानी ना ही बाबू, सिंह सलामत, सास सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

राज जो खात्मो ख्वाब बणियल धाड़ेलनि जी सरेंडर पॉलिसी भी नाकाम। सूबे में फुरूं धाड़ा चोरियूं अगवा इंसानन जो कत्ल रोज जो मामूल बणियल। केटीए न्यूज खानपुर मार जो रिपोर्ट अजीम सियाल अगवा बाज़ियाबी लाइ 1 करोड़ रुपया भुंग तलब। अजीम सियाल जी गाॾी पनवाकिल जे कचे मां हथ। डीआईजी सखर केटीए न्यूज खानपुर मार जे रिपोर्ट अजीम सियाल जे अगवा जी तस्दीक करे छॾी। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं आईजी सिंध साफ़ीअ जे अगवा जो नोटिस वरितो। डीआईजी सखर खां रिपोर्ट तलब। डीआईजी सखर नासिर आफ़ताब पठाण चयो आहे त केटीए न्यूज जो रिपोर्ट अजीम सियाल अगवा थियो आहे। बाज़ियाबी लाइ संजीदा आहियूं। ड्रोन कैमराउनि ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू करे छॾी आहे। केटीए न्यूज खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, पनवाकिल, तंगवाणी, ठारू शाह, मुरीद शाक, डोकरी, मीरपुर, साकरो, अठहठ, मोरी, गंबट, मदहजी, मुबारकपुर, सगियूं, ड्रिबमेयर शाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलम धणियुनि पारां एहतजाज कयो वियो। बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन शोभान जारी। 4 ॾींहनि दौरान 71 खां वधीक दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि 21 सेप्टेम्बर खां कोटिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कयो वियो। ज़ियारत ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे तबाह कयो वियो। रुगो ऑपरेशन शोभान में हेल ताईं 33 भारतीय इंसान पर दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 23 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 25 सेप्टेम्बर ते नौशके में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मारिजी विया। मंडीअ में 6 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे मिक़दार में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथु कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस वॾी इलाइक़े खे क्लियरन कराए छॾियो। ख़तरे खां महफ़ूज़ बणायो वियो। भारतीय सरपरस्तीअ में अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ दहशतगर्दी शहरनि ऐं अमन लाइ ख़तरो बणियल आहे। ईरान खे तजवीज़ुनि ते अमरीका खां बाज़ाबता तौर जवाब जो इंतज़ार। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराचीअ चयो आहे त अमरीकी सदर जो शुरूआती रदअमल ॾिठो आहे। ट्रियाकड़ी कंदड़नि तरफ़ां हतमी मौक़ुफ़ ॼाण जा मुंतज़िर आहियूं। पासदार इनकलाब चयो आहे त हिन भेरे दुश्मन जे जारियत जो जदीद हथियारनि सां जवाबु ॾिनो वेंदो। अमरीका वटि ॾखिण एशिया मां निकिरण खां सवाइ को ॿियो बि गस न आहे। नई आलमी निज़ाम खे अमरीका जी पुराणी हैसियत में वापसि अचण जी ज़रूरत ऐं इजाज़त न ॾिनी वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद खां कराची पहुची वियो। संदसि सदारत हेठि पीपल पार्टीअ जो इजलास जल्द थियण जो इम्कान। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर सरफराज बुगटी बि कराची पहुतल। सियासी मामलनि समेत नवनि सूबनि जे मामलनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार खे पैसनि जी ॾेती लेती तां क़तल करण जो इनकशाफ़। पुलिस पारां 2 मुख जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा। पुलिस ज़रियनि मूजिबि नरेश कुमार जे क़तल केस जे 2 मुख जवाबदारनि खे टंडोल आयार मां गिरफ़्तार कयो वियो। नरेश कुमार खे कर्ज़ वापसि ॾियण बहाने घुराए क़तल कयो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में दरियाहनि जे आलमी ॾियारे ते सिंधुअ जे तहफ़ुज़ लाइ तक़रीबूं ऐं एहतजाज। सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंधुतो में सावा मुंझो जे उनवान सां ठुल, बाडराए, कोटड़ी, ढोरो नारो, सकरंड, सेवण, नवाब वली ममन, जोई ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा। अॻवाणनि चयो त सिंधु दरिया ते धाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कबो।

दड़ो में गुजरियल रात हथियारबंदनि जी फायरिंग में कतल थियल 15 वरनि जी नींगरीअ जो लाश रखी धरणो वारसन ऐं सवें शहरनि मक़तूल नींगरी मुर्क मेमण जो लाश पिंजारी पुल चौक ते रखी धरणो हयो। मुज़ाहिरनि जो बिना देर नींगरीअ जे कतल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े ओस्ता महमद में हथियारबंदनि जी फायरिंग, ॿ ॼणा क़तल, हिकु ज़ख़्मी। बाबाकोट थाणे जे हद में नौरोज़ उमराणी ऐं संदसि गन में नबी बख़्श खोसो खे क़तल कयो वियो। हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो ज़ख़्मी। लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस मूजिबि वाक़िए जो कारण मालूम न थी सघियो आहे।

0: बुढ़ी फोत जनायल नौजवान के कतल करण जो इल्जाम वारसन जो चवण है तो परवेज के तशद करण बद कतल करे लाश वाह में लोड़ो वो है। कश्मोर में सिंध के इम्कानी विरांगे बदअमनी महंगाई ए कबीलाई झेड़न खिलाफ अवामी वर्कर्स पार्टी पारा रैली कढ़ी वही। अगवाण तो सिंध जो विरांगो कदें भी नहीं सिंधु के पानी से धाड़ो कबूल न कंदी। सिंध में कबीलाई दहशतगर्दी है कारोकारी भी कारोबार बणजी वो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल 1.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
3: असली चीजान चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद। जी जान चारो मसालो,
4: जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385

0: इन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: शाह पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
0: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: Subah mein puron daada choriyon agwa insaanan jo qatl roz jo mamool banyal. KTN News Khanpur Mahar jo reporter Azim Sial agwa baziyabi la 1 crore rupiya bhung talab. अजीम सियाल जी गाड़ी पनवाकल के कचे में हथ डीआई जी सखर केटीएन न्यूज खानपुर मार जे रिपोर्टर अजीम सियाल जे अगवा जी तस्दीक कर छी घरू वजीर जियाल अंजार आई जी सिंध साहब जी अगवा जो नोटिस वरतो डीआई जी सखर का रिपोर्ट तलब डीआई जी सखर नासिर आफ्ताब पठान केटीएन न्यूज जो रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा थो है बाजियाबी लाइ संजीदा आयो ड्रोन कैमरा जरिए मॉनिटरिंग शुरू कई है केटीएन न्यूज खानपुर मार जे रिपोर्टर अजीम सियाल जे बाजियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ़ शहरन में मुजाहिरा ऐं धरणा घोटकी सखर शहदादपुर रतोदेरो बख्शापुर भान सहदाबाद न्यू सहीदाबाद ठिकराठो कश्मोर डहरकी जरवा रोहिड़ी कंबर कोटड़जी राधण पनो अकल तंगवाणी ठारू शाह मुरीद शाह डोकरी मीरपुर साकरो अठ अठ मोरी गंबट मदेजी मुबारकपुर सगियूं ड्रिब मेयर शाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलम धड़नि एहतजाज कयो साफ़ अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 315 109 03000 515 09।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर लैंप सेंटर एरिया होंडा मोटर 3 होंडा कंपनी अपनी

0: फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरआई 03073592120
1: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे
2: हां साईं गाल भी एड़ी आहे
1: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे
2: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे
1: छा छा
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे तो ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे तो
1: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो
2: साईं रेडिए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच
1: मां हाणे ई थो वणा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
2: हा साईं हा
0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
3: मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु

0: स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें 3855569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुट कोटड़ी का इस्लामाबाद जो मशहूर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मुकम्मल तौर नाकाम सूबे में फुरू धाड़ा चोरियों अगवा ए इंसान जो कत्ल रोज जो मामूल बनल KTN News खानपुर महर के रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा किया वो बाजियाबी ला 1 करोड़ रुपया भुंग तलब पने आकिल के कच्चे मां गाड़ी हथ DIG सखर KTN News खानपुर महर के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा की तस्दीक कर छी घरू वजीर ज़ियाल अंजार ए IG सिंध सहाफी के अगवा जो नोटिस वरतो DIG सखर का रिपोर्ट भी तलब DIG सखर नासिर आफ्ताब पठान चयो है तो KTN News रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा थो है बाजियाबी ला संजीदा आयु ड्रोन कैमरा जरिए मॉनिटरिंग शुरू कई है।

0: खैरिया जी अब्दोज हंगोर पारा अरबी समुंड में पहिरीं लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो PNSM हंगोर डिघे फासिले ताईं मार कंदड़ एंटी शिप क्रूज मिज़ाइल कामयाबी सां फायर कयो। ISPR मूजिब एंटी शिप क्रूज मिज़ाइल हदफ खे कामयाबी सां निशानो बणायो आहे। पाक बेरिया जे सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो। नेवल चीफ हंगोर अब्दोज जी जंगी सलाहियतुनि ऐं अमले जी पेशेवरानी महारत जी साराह कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301386543।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320437 ऐं 0242460100।
6: आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, ये है मेरी खूबसूरती।

0: ना धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब मिल्क क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, एक्नी क्रीम, कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03001-00-310-5109।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो वधाए जा ढोर चारो जानवर नालो वठी तलब कंदा।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान 264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

बात करती हूँ, जिसे पढ़कर मुझे भी बहुत फील हुआ। अगर आप गहराई से जाएं, गहराई में सोचें, तो फिर आपको पता चलेगा कितनी गहरी बातें हैं ये। आपको आज की शाम भी

آسف تهريب لك الفيلم.

तुम कभी नहीं जानते कि कौन सा लम्हा तुम्हारी जिंदगी की आखिरी याद बन जाए। जिंदगी में हमेशा अलविदा कहने का एक जिंदगी हमेशा हमें अलविदा कहने का एक आखिरी मौका नहीं देती। शायद इसलिए कुछ लम्हों को मामूली समझकर हम गुजार देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी गफलत है ये, क्योंकि हमें खबर नहीं होती कौन सी मुलाकात आखिरी है, कौन सी गुफ्त

रुखसत होने से पहले हमेशा किसी को भी अलविदा कहने की मोहलत नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती जी बिल्कुल। वाकई अगर वाकई कितनी गहरी बात है, हम कितने लोगों को कितने लम्हों को मामूली समझकर छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि वही तो आखिरी बार था। अक्सर हमारी मुलाकात होती है, किसी से बात होती है और हम उसको ऐसे समझते हैं कि दोबारा मिलेंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि वाकई वो आखिरी वक्त था, वो आखिरी टाइम था। तो आवाज़ का रिश्ता वही प्रोग्राम में मैं एक अच्छा सा जो है ट्रैक प्ले कर रही हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं प्ले कर चुकी हूँ एक सॉन्ग अच्छा सा, और फाखर की आवाज़ में पाकिस्तानी सॉन्ग है और ये ड्रामा भी था एक, उसका ही ये सॉन्ग है, कभी अलविदा ना कहना काश हम जुदा ना होते। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको एंजॉय करें सॉन्ग को। साथ साथ मैं सवाल भी करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी आखिरी मुलाकात या आखिरी बात थी जिसे आपने इस वक्त मामूली समझा था, लेकिन आज वो सिर्फ एक याद बन के रह गई है। तो जी बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं, और साथ साथ ये आवाज़ के रिश्ते में पहला ट्रैक एंजॉय करें, फाखर की खूबसूरत सी आवाज़ मेरे प्रोग्राम में शामिल की है।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोज मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर के रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेरिन

0: और खूबसूरत जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म, लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003385569। अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुम्मे, छंछर, आचर ए सोम।

0: निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: रابطے लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319-1558-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

तेरे आज भी जो है मैं ये फरमाइश जो है कोशिश करती हूँ शामिल कर दूँ प्रोग्राम में। अच्छा जीता हूँ आप लोग मुझे ये तो बताएं आप लोग सुन कहाँ कहाँ से हैं, पाकिस्तान के किस किस गली कोने कूचों में, घर के गली घर के कोनों में कहाँ कहाँ बैठ के आप मुझे सुन

बेटा है, कोई बैठा है, कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, तो कोई शॉपिंग पर है, कोई सफर के दौरान मुझे सुन रहा है, जहाँ भी जिस जगह पे आप मुझे सुन रहे हैं जरूर मुझे बताया गया है। मुझे पता तो चले मेरी आवाज कहाँ कहाँ तक आप लोगों की समातों से टकरा रही है जाकर। अच्छा जी, तो हमने आज का सवाल मैंने ये रखा था, क्या जिंदगी कभी मौका देती है आपको अलविदा कहने का? बिल्कुल नहीं देती। किसी को भी नहीं पता आखिरी वक्त आखिरी बात कौन सी है। तो हम लोगों ने हमेशा जो है हम ये छोड़ के सोच देते कि नाराज किए छोड़ दो, आज नहीं कल देख लेंगे। तो जो आज है वो आज ही है ना, वो कल नहीं है। पता नहीं वो कल आए या ना आए,

तुझे बताएं कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रैक जो मैंने प्ले किया था ब्रेक पे जाने से पहले। फर्स्ट ट्रैक था अलविदा का, और इससे मतलब कि आप लोगों को किसकी याद आई, कुछ सताया। तो जी इसके साथ ही एक और नेक्स्ट ट्रैक भी प्ले कर देते हैं प्रोग्राम में। एक अच्छा सा सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ, और ये पाकिस्तानी पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें पाकिस्तानी कास्ट हैं सारे। और ये सॉन्ग मैंने प्ले किया है दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म। इसमें ये मीरा के ऊपर, मतलब मीरा है एक्टर, इसके अंदर पाकिस्तान की मोस्ट फेमस एक्टर हैं ये भी। और फिल्म घर कब आओगे, तकरीबन ये 90 की कुछ ये फिल्म है, मतलब के 98 या फिर 97 में, मतलब ये फिल्म बनी है इनकी 1998-97। तो आप सब भी इसको एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ इस सॉन्ग। अच्छा, इसका एक जो सॉन्ग है इंडिया में भी बना है, तो मोस्ट लोग समझते हैं ये इंडियन सॉन्ग है, ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी सॉन्ग है। पहले पाकिस्तान ने बना है, इंडिया में इसकी कॉपी की।

दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। ये फिल्म है ये घर कब आओगे, पाकिस्तानी फिल्म है और ये मैं मुझे सन याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी फिल्म है ये और इसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर देखिएगा ये फिल्म आप लोग।

0: इंडियन सॉन्ग ही रखेंगे, पाकिस्तानी पहले पाकिस्तान में बना उसके बाद इंडिया में बना है। ऐसे बहुत से सॉन्ग हैं वक्तन फक्तन में, हर सैटरडे संडे ऐसे कोई ना कोई सॉन्ग लेकर जरूर आऊंगी जो इंडिया में कॉपी किए गए, कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं थी। हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स एक्टर्स बहुत टैलेंटेड थे और हमारे पास राइटर्स की भी कमी नहीं थी। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हमारे होते हैं जो फिल्म निगार हैं, मतलब कि फिल्म लिखते हैं, ड्रामा निगार जो हैं ड्रामे लिखते हैं, बहुत टॉप पे जाते थे और उसी की अक्सर कॉपीज इंडिया में होती थी, कॉपी करते इंडिया वाले। खैर वो चलता रहता है, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, कॉपी कभी कभी ना कभी ना कभी किसी ने किसी को कॉपी करते। अच्छा जी, टाइम हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ आवाज़ का रिश्ता। तब तक के लिए मुझे छोटा सा ब्रेक तो लेना है।
1: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona, sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing, 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se. अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752642 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

हेलो लिसनर्स, हम लोग शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी बिल्कुल, और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो थोड़े बहुत कुछ कमेंट्स आ चुके हैं हमारे प्यारे लिसनर्स ने भेजे हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ, क्योंकि उनकी कुछ फरमाइश हैं, सॉन्ग्स हैं वो प्ले करें, लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ भैया आप ज़रा सही से लिख कर भेजें तो शायद मैं समझ जाऊँ। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले जो हमारे लिसनर्स आए थे ये नज़ीर खोसू साहब हैं बलोचिस्तान, सोबतपुर बलोचिस्तान से ही हमें ज्वाइन करते हैं, और इन्होंने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है कि ज़िंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके है। बेसहारा इंसानों की ज़िंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। वाह क्या बात है, ये वही बात आ गई ना कि आप ये सारे काम कर, अब ये नहीं छोड़ सोचें कि आज हम चलो हम इसके कल काम कर देंगे, कल हम इनके काम आ देंगे, क्या पता कल वो वक्त ना आए, वो टाइम ना आए, वो लम्हा ना हो जिस वक्त उसे ज़रूरत थी सहारे की, आपने उसे सहारा नहीं दिया। तो आप सहारा भी दें, सहारा बने कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी सारे मखलूक में से, इतने सारे लोगों में से आपको चुना है, तो कोई ख़ास वजह है ना, वरना उसके इतने सारे लोग हैं अल्लाह पाक अपने मखलूक में से किसी को भी चुन लेता लेकिन आपको सिलेक्ट कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, इसके साथ ही हैं हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब हैं, मोहम्मद खान हैं, कुंभार हलीपोटा स्टाफ नस्त मीरपुर खास। अच्छा, इन्होंने मीरपुर खास से ही हमारा शो सुन रही हैं। अच्छा जी, चलें बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रही हैं या रही हैं, बहरहाल आपने शायद फरमाइश की है कोई के कोई सॉन्ग आप सुनना चाह रही हैं लेकिन फौजिया सुमरो का, तो आप मुझे ऐसा करें ये थोड़ा सा सही से लिखकर भेजें, मुझे समझ नहीं आ रहा सॉन्ग आप कौन सा कह रहे हैं, क्योंकि जो सॉन्ग वहाँ मैं सर्च कर रही हूँ ये आ नहीं रहा है वहाँ पर, तो आप मुझे काइंडली एक बार फिर से मैं लिखकर सेंड कर दें तो मैं इजीली इसको ढूंढ लूँगी। तो इसके साथ ही एक और अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ, राहत फ़तेह अली ख़ान की इस खूबसूरत सी आवाज़ में तेरे बिन जीना। जी बिल्कुल, ये मायरा खान की फिल्म का सॉन्ग है, बिन रोए फिल्म का ये सॉन्ग था, आई थिंक शायद ये वही है, तो मैंने प्ले कर दिया है आवाज़ के रिश्ते में, आप लोग इंजॉय करें। आवाज़ के रिश्ते में एक और सॉन्ग मैं प्ले कर चुकी, एक आवाज़ आप लोग की खिदमत में पेश कर चुकी हूँ राहत फ़तेह अली ख़ान की खूबसूरत सी आवाज़ में, पाकिस्तान के टॉप सिंगर, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें इनको। और मुझे जरूर बताएं कि कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जब आपने सोचा कि ये काम आज नहीं करना और कल कर लेंगे, फिर वो कल नहीं आता, वो वक्त नहीं आता, वो लम्हा नहीं आता। क्या जिंदगी वाकई किसी को मौका देती है? मेरे ख्याल से जिंदगी कभी किसी को मौका नहीं देती, आज तक तारीख में कभी किसी को ऐसा मौका नहीं मिला, तारीख की किताबें पढ़ लें ऐसा कोई नहीं है। चलें जी, इंजॉय करें राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ को, आवाज़ का रिश्ते।

सिंध मां धाड़ियल राज जो खात्मो ख्वाब बणियल धाड़ियल जी सरेंडर पॉलिसी भी नाकाम। सूबे में फुरूं धाड़ा चोरियूं अगवा ऐं इंसाननि जो कतल रोज़ जो मामूल बणियल। के टी एन न्यूज़ खानपुर मार जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अगवा, बाज़ियाबी लाइ 1 करोड़ रुपया भुंग तलब। पनवाकिल जे कचे मां गाॾी बेहथ, डी आई जी सखर के टी एन न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी अगवा जी तस्दीक करे छॾी। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं आई जी सिंध सहाफ़ी जे अगवा जो नोटिस वरितो। डीआईजी सखर खां रिपोर्ट तलब। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान चयो आहे त के टी एन न्यूज़ जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अगवा थियो आहे। वाज़ियाबी लाइ संजीदा आहियूं, ड्रोन कैमरनि ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू कई आहे। के टी एन न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलमदाणी सरापा एहतजाज बणियल। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, सखर, शहदादपुर, रतोदेरो, बख्शापुर, भान, सईदाबाद, न्यू सईदाबाद, ठिकराठो, कश्मोर, डहरकी, रोहड़ी, जरवार, कंबर, कोटलीजी, राधण, पनवाकिल, तंगवाणी, ठारूशाह, मुरीद शाख, डोकरी, मीरपुर साकरो, अठहठि, मोरी, गंबट, मदेजी, मुबारकपुर, सगियूं, ड्रिम, मेहरशाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलमदड़नि पारां एहतजाज कया विया। अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करण जो मुतालबो।

ईरान के तजवीज़ुनि ते अमरीका खां बाज़ाब्ता तौर जवाब जो इंतज़ार। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राग़ची चयो त अमरीकी सदर जो शुरूआती रदअमल ॾिठो आहे। ट्रैकड़ी कंदड़नि तरफ़ां हतमी मौक़िफ़ ॼाणण जो मुंतज़िर आहियूं। पासदारान इनकलाब चयो आहे त हिन भेरे दुश्मन जी जारियत जो जदीद हथियारनि सां जवाब ॾिनो वेंदो। अमरीका वटि ॾखिण एशिया मां निकिरण खां सवाइ ॿियो गस बचियो नाहे। नए आलमी निज़ाम खे अमरीका जी पुराणी हैसियत में वापसि अचण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

कंहिंखे बि कानून हथ में खणण ऐं फसाद करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। सिंध हुकूमत हर साज़िश खे नाकाम बणाईंदी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त इल्ज़ाम हणण ऐं सियासी पॉइंट स्कोरिंग बदिरां मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। जलसनि ऐं जलूसनि जी इजाज़त हुजणु घुरिजे। अवाम खे परेशान न थियणु घुरिजे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कराची यूनिवर्सिटी रोड ते ठहंदड़ रेड लाइन बी आर टी मनसूबे जो मौसमियात फ्लाई ओवर जो बि इफ़्तिताह कयो।

पाक बहरिया की अब्दोज हंगोर पारा अरबी समुंड में पे लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो पीएनएसएम हंगोर डिगे मुफासिले से मार कंदड़ एंटी शिप क्रूज मिसाइल कामयाबी से फायर किया। आईएसपीआर मूजिब एंटी शिप क्रूज मिसाइल हदफ के कामयाबी से निशानो बनाया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो किया। नेवल चीफ हंगोर अब्दोज जंगी सलाहियत हमले की पेशेवरानी महारत की भी सराह कई।

0: हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार के पैसन की रेती लेती तक कत्ल करने जो इंकशाफ पुलिस पारा ब मुख्य जवाबदार गिरफ्तार करने की दावा डीआईजी एसएसपी हैदराबाद है जवाबदार के टंडो जाम टंडो अलिहार में गिरफ्तार किया वो रेती लेती तक वकास मुगल असद धमाच नरेश के कत्ल किया नरेश कुमार जहा वकास मुगल डा घना पैसा रहल हुआ वकास मुगल असद धमाच के 10 लाख जो आसरो दई नरेश के कत्ल करायो एक जवाबदार फरार है। कराची के दखण जिले में रात शहीद थियल पुलिस अहलकार वाले वाके में आला पुलिस ऑफिसर की गफलत साबित शेरीन जना कॉलोनी में पुलिस अहलकार की शहादत डीआईजी दखण असद रजा एसएसपी महरोज अली की कारकर्दगी से सवाल उथारे छाया घरू वजीर ज़ियाल अंजार के हुकुमन के नजरअंदाज करण के भी मामूल बनाए छो शहीद अहलकार के घरू वजीर पारा तय थियल एसओपीस के नजरअंदाज कर मंशियात फरोशन की गढ़ में मोकलने जो इंकशाफ तय थियल एसओपीस मुकम्मल तौर से नजरअंदाज किया वो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो पहिरियों कदम वधायो।
3: मालवन भारन लाइ खुश खबरी 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
8: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो जारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793

आया असने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था असान जे लाइव कॉल जो नंबर है 0301-196-851 0301-216-851। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक कन गलो, नज़लो निछू मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-216-851। डॉक्टर साहब जी क्लिनिक ऐं टाइम नोट कंदा। डॉक्टर साहब अरबा, खमीस, जुमे, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पटा पेट्रोल पंप कोटडी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि।

अमा असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। इंतकाल करे अवां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक कन गलो नज़लो निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघु, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फटफुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-96-8151 0301-96-8151।

0: ऑटोज, थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं सीएनजी रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोज मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अमां सभी बुधंदड़ के खुश आमदी चौं था। प्रोग्राम आए सेज गाल असान स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब।

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851।

0: प्रोग्राम में शामिल थे असो लाइव कॉल जो नंबर है 0301-2196-851। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमार जहाँ माहिर डॉक्टर हैं जिनमें गुर्दे पिते मसाले की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा संदन जोड़न गोडन जो सूर कुंडरक जो सूर नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन औरतन मर्दन के पोशीदा बीमार जो कामयाब इलाज कंदा है।
1: बिल्कुल मुख्तलिफ़ बीमार के हवाले से जहाँ गाल मिसाल असाई तो नक की हड्डी वी वे या नक की हड्डी से गोश्त वरी अचे उन बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथिक में कामयाब ट्रीटमेंट कई वी है। तो बिल्कुल होम्योपैथिक में बगैर ऑपरेशन के जो है सो इन ट्रीटमेंट कई वी है। बेसिकली जी एलर्जी रही है जैसे कर नज़र प्लेप्स चाहिए वादा उन बगैर ऑपरेशन के सो उन खोड़ सारा बया प्रॉब्लम्स जाहिर या तो रेशो जो है सो वो तवे तो गले की तरफ किरंद है या रेशो अवे कन की तरफ वो है जैसे करो सो अव बुधण में अवा के घट इंद है सो गले की तकलीफ़ थी वी है या जुकाम न छी है या बूसट जो है सो थी वो है गोश्त जो वी है जैसे कर तकलीफ़ पेशेंट के तमाम घड़ी थी वी अड़े तरीके से लास्ट टाइम जो टॉन्सलेट्स के हवा से गाल कईसी तो टॉन्सलेट्स भी एनलॉर्ज थी वादा तो मरीज के ाल में तकलीफ़ थी वी है मरीज के यानी बुखार वगैरह या सूर की शिदत थी वी है या उनखा अलावा असके बेन मर्जन के हवा से गाल जोड़न के हवा से जिनके पुराने जोड़न की तकलीफ़ होंगी है उनको कामयाब होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट कई वी है या रगुन के हवा से गल कईसी तो जी स्पोंडिसाइटिस के हवा से गल कोहरा हों गर्दन जहा उ जैसे कमज़ोर थी वादा या उन्होंने तकलीफ़ अची वी है या वो डैमेज थी वादा तो उनको कामयाब इलाज होम्योपैथिक में कह वो है या हिप जॉइंट पेन जैसे चेल जो सूर थी है तो उनको भी कामयाब इलाज उन भी कई सारा असबाब हों सबब हों या शाइटी का पेन कंखे कुनरग जो सूर जो या लंगड़ी जो दर्द चवे उन में भी कामयाब ट्रीटमेंट कई
0: सर तुझे मौजू के बरकरार रखा इन का एक कॉल है हल्दा एक बी कॉल की तरफ अस्सलाम वालेकुम जी अदा कह रहे किथा खा
2: सर कोटड़ी कमी अलाउड मेल कॉल लाचारी का गुलाम पर लाचारी हल पे पे सर
0: जी अदा शाह पूछना चाहता डॉक्टर साहब का
2: सर मुखे जरे घट चमाइना थी है जुकाम से जुकाम छदे ही कोन तो आई जो हाथ पे बूसट के तो समझे सर।
0: अच्छा
2: हाँ
0: कोटड़ी कबीर तमाम वेझो है डॉक्टर साहब की क्लिनिक भी बिल्कुल करीब है तो दिखार रूबरू तो बेहतर थी डॉक्टर साहब वहाँ के बुधाए तो मशवरो दिए तो जी सर
1: जी सर बिल्कुल पुरानो जुकाम जी अव अदे की गाल की कोटड़ी कबीर तमाम वेझो है मेहरापुर शहर के खास करो इन रस्ते से ही असानी क्लिनिक लगे थी स्पॉट से तो जी दादे के चलो रूबरू दिखारी तो बेहतर रो उनखा अलावा जी गाल कईसी तो नज़लो जुकाम यो पुरानो थी वो है उन जो खोड़ सारी वजूहत थी कंखे मोरूसी हों कंको है सो यानी एलर्जी रही है पुरानी या सैन्यूसाइटिस वी है इन्फ्लुएंजा होंगी है उनके कर बहरहाल वो भी जैसे पेशेंट सामने है तो उनके ऐसी उनके ट्रीटमेंट कई या देखे भी चाहिए रूबरू देखे सकता बाकी फिलहाल देखे तो दस पंध यो ही सकूँ था तो रोज़ाना रात जो पानी गरम करे उनकी बाफ़ वे पानी गरम करे लूण वी उन नक साफ़ करे गरारा करे अदरक वाली चाय पिए इंशाल्लाह ताला उनसा काफ़ी अफाको है या पानी जहाँ गरारा जो है सो उनके मुफीद पहुँचाइन था थदो पानी सणबी शे तरल शे चावर खट्टी शे ये इस्तेमाल कर बंद कर बेहतर उनको ट्रीटमेंट हली हुई है तो रूबरू दिखारे वो जी सही
0: जी सर पांजे मौजू के कंटिन्यू रखंदा सर
1: असा कैसी पे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जी शटिका के हवाले से गाल कैसी कुनरग के हवाले से उन अलावा जो गर्दन के हवा से गाल असड़ियों भेनरियों जिनके चेहरे ते मोहिड़ा या चेहरे ते दाग धब्बा छायूँ थी वेंदियों आन या चेहरे ते वार अची वेंदा आन जिस्म ते जेके अनवांटेड हेयर्स हेयर्स चइबो आहे उनजी भी असां वटि कामयाब ट्रीटमेंट मौजूदु आहे बग़ैर कंहिं साइड इफेक्ट जी। मज़े जी ॻाल्हि हिकिड़ी आहे असांजे इलाज होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में होम्योपैथिक तरीक़े इलाज हिन वक़्तु दुनिया में ई मशहूरु आहे ऐं दुनिया जा टॉप लेवल जा जेके जेके हुक्मरान लेवल जा जेके ऑफिसर्स तबके जा हज़रात आहिनि उहे असांजी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट खे यूज़ कंदा आहिनि। उहे इन जे करे उनखे ज़्यादा तरजीह ॾींदा आहिनि त हिन दवा जो को साइड इफेक्ट न आहे ऐं साइड इफेक्ट इन जे करे न आहे जो होम्योपैथिक दवा जेकी आहे सो हिकिड़ी नेचुरली दवाई आहे कुदरती दवाई आहे जड़ी बूटियुनि मां ठहंदी आहे हर्बल्स जेको आहे सो जेके ख़ासि हर्ब्स हूंदा आहिनि उन्हनि मां जेको आहे सो दवाई ठहंदी आहे केमिकल्स मां दवा न ठहंदी आहे हिन जो को बि साइड इफेक्ट कोन्हे को इन जे करे इन खे तरजीह ॾिनो वेंदो आहे इन इलाज खे ऐं इन इलाज में तव्हां ॾिसो था त जेकॾहिं बग़ैर ऑपरेशन जे हिकिड़ी अहिड़ी मूज़ी अहिड़ी वॾियुनि बीमारियुनि जो इलाजु मौजूदु आहे जंहिंमें पहिरें बीमारियुनि जो असां ज़िक्र कयोसीं जीअं हाणे बीमारियुनि ॻाल्हि कयूं त गुर्दे जी पथरी आहे पिते जी पथरी आहे मसाने जी पथरी आहे त बग़ैर ऑपरेशन जे बग़ैर यानी हिकिड़ो तव्हांजो ॾिसो पिते जी पथरी में पिते खे रिमूव कयो वेंदो आहे गॉल ब्लैडर रिमूव कयो वेंदो आहे हीअ हिते चइजो उनमें फेट जी जेको आहे सो स्टोन हूंदी आहे जेकी असांजी दवा जे रस्ते उहा ॻरी वेंदी आहे ऐं हुनखे को बि रस्तो न हूंदो आहे। घणनि खे इहो ज़हन में गुमान हूंदो आहे या घणा इहो सुवाल कंदा आहिनि त पिते जी पथरी कीअं निकिरंदी आहे जॾहिं त पितो सॼो बंदि हूंदो आहे। बिल्कुलु असां बि इहो ई चयो आहे त कॾहिं बि हुन चयो आहे त पिते जी पथरी निकिरी वेंदी आहे असां इहो चयो आहे त पितरे जी पथरी ख़तमु थी वेंदी आहे ॻरी वेंदी आहे बाक़ी गुर्दे जी पथरी जेको आहे सो निकिरी वेंदी आहे मसाने जी पथरी निकिरी वेंदी आहे ऐं उहे बग़ैर ऑपरेशन जे जेको आहे सो हिन जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। किन घणनि जी तिरी वधी वेंदी आहे स्प्लीनोमेगोली जेके चइबो आहे तिरी वधी वेंदी आहे जंहिंजे करे प्रॉब्लम्स थी वेंदा आहिनि ऐं मरीज़ जेको आहे सो यानी हुनजो पेट सुॼी वेंदो आहे पेट में पेट भरिजी वेंदो आहे पेट में पाणी पइजी वेंदो आहे फैटी लिवर थी वेंदो आहे घोड़ सारा लिवर सां कनेक्टेड प्रॉब्लम्स थी वेंदा आहिनि ऐं उनजो बि असां वटि बग़ैर ऑपरेशन जे बग़ैर कंहिं ॿिए साइड इफेक्ट्स दवा मौजूदु हूंदी आहे जेकी मरीज़ बिल्कुलु ठीकु रहे। हा के पेशंट्स असां वटि अहिड़ा ईंदा आहिनि जेके लास्ट स्टेजिस में ईंदा आहिनि घणो टाइम जेको आहे सो अरसो इन बीमारी में रही करे ॿियनि खे ॾेखारे करे करे ऐं जॾहिं बिल्कुलु ई जॾहिं उतां बि उन्हनि खे जवाबु मिली वेंदो आहे ऐं वधीक ॾिसो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे ज़िंदगी मौत हयाती अलाह ताला जे हथ में आहे जॾहिं अलाह ताला जेको आहे सो कंहिंखे ज़िंदगी ॾियणु चाहे त कहिड़ो बि दुनिया जो को बि डॉक्टर हुजे केरु बि हुजे उनमें कुझु नथो करे सघे ऐं जॾहिं उनजो आयाती पूरी हूंदी त उनखे बि केरु जेको आहे सो कुझु नथो करे सघे। इन जे करे हिकु त ॻाल्हि इहा ई आहे ॿी ॻाल्हि जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त पेशंट इन्हनि सारनि अहिड़े पछाड़ी स्टेजिस में हूंदो आहे त पोइ मजबूरनि असांखे बि मरीज़ खे रेफर करिणो पवंदो आहे या जवाबु ॾियणो पवंदो आहे। सो इन जे करे जॾहिं बि मां त इहा ॻाल्हि कंदो आहियां त जॾहिं बि कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ूं थियनि थियूं त जल्द अज़ जल्द उन में डिले न करे माण्हू लेट न करे चाहे कहिड़े बि डॉक्टर खे जल्दी ॾेखारण जे करे ऐं जल्दी इलाजु कराए उन में सुस्ती न करे। जेकॾहिं एलोपैथिक में फ़र्क़ु नथो पए त होम्योपैथिक जी तरफ़ रुजू करे ऐं जल्दी अची उते ट्रीटमेंट जेको आहे सो उनजी वठनि त उहा बहितरु हूंदी आहे। असां वटि के अहिड़ा केसिस आया बि आहिनि लेकिन पोइ उन में अलाह ताला उनखे शिफ़ा बि ॾिनी आहे लेकिन पोइ ख़ासि करे थींदो ईअं आहे जॾहिं कंहिंखे फ़र्क़ु पवंदो आहे त हू अध में इलाज जेको आहे सो बंदि करे छॾींदा आहिनि पोइ वरी जेको आहे सो असां वटि ईंदा आहिनि लेकिन तॾहिं लेट थी चुकी हूंदी आहे। जॾहिं भई तव्हांखे ॿिए हंधि फ़र्क़ु किथां बि कोन पियो पियो ऐं हाणे तव्हां हिते आयो ई इलाजु कराइण ऐं उन में तव्हांखे रिलीफ़ मिलियो तव्हां उन इलाज खे त कम से कम जेतिरो मतलूबु आहे कोर्स हूंदो आहे ओतिरो त हलायो घटि में घटि। जिते माण्हू पहिरियां साल साल गुज़ारे आयो लखे रुपया ख़र्च करे आयो हाणे हिते जेकॾहिं ॿ टे महीना केरु ॿ टे हज़ार कोन थो ख़र्चु करे सघे त उनखे माण्हू छा थो चई सघे। सो इहो जेको आहे सो इहा हूंदी आहे हिकिड़ी यकीन जी ॻाल्हि हूंदी आहे। ॿियो घणा वात घणियूं ॻाल्हियूं असां वटि मुआशिरो बि कुझु अहिड़ो थी चुको आहे ऐं कुझु यानी को पेशंट अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिनखे जेकॾहिं फ़र्क़ु पए थो त अॻिलो चवंदो भई वरी हे इलाजु कीअं थो कराई हिन मां तोखे हीअं थी वेंदो हीअं थी वेंदो त बहरहाल जो है सो इंसान जात की गाल होंगी है कंखे मू कें भलो सोची है कंखे सही रुख से कंखे केर मू लाए कंखे भी गलत फीड न करे यरगुमाल न करे वर्गलाए न केर कंखे कुछ दई नो सके उनके यानी सिकाए भी न या उनके खसे भी न उनका घट में घट उन सही राह मूँ जो है सो अस खोड़ सारा इंदा जो पेशेंट एक अस पेशेंट इंदा जी अस नेटवर्क है एफ एम नेटवर्क हों एफ एम तुम बुधी कर पहुँचा उन्होंने रिलीफ मिलो है उही पेशेंट वरी बेन मरीजन के मोकलींदा भई अस भी इतना दवा वी आया अस तुम भी हाँ इतने अस खुद वी सही अस उनके वी आया खोड़ सारा फलाने हंध ट्रीटमेंट उन्होंने एतरो वक्त एतरा साल उन्होंने ट्रीटमेंट कराई है लेकिन फर्क न पो है जैसे वे मरीज वरी अल्लाह ताला जो एकड़ो करुणो है अल्लाह ताला जी शिफा जी गाल है उन्हें जा करुणे एहसान है असा जैसे उन मरीज के वरी अस दवा दिना तो अल्लाह ताला जे रब करीम के एहसान से वरी वो मरीज भी ठीक थी वो है मैं पैं भी गाल कही 100% पेशेंट किथा भी ठीक न थो है जाहिर या 10% पेशेंट असा वटा भी ना उम्मीद थी वह हों लेकिन इन्हें में भी सजो रब ताला जो ही जो है सो करम हों रब ताला जो ही हों जो जो जेस तई अल्लाह ताला जैसे जितना चाहे उत शिफा दींद है जितनी चाहे उत शिफा मिली है सो इन जो गाल सिर्फ यह कई तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में को भी नुकसान कोने को तवे पे गाल फायद पवे फायद न पव है तो नुकसान भी कौन पव इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जग जग मशहूर है ही तो अवजी खुश नसीबी है अवज शहर मेहरापुर में एक जो है सो जर्मन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जी कई वजह थी जैमें जर्मन जो दवाओं भी दिन व्यन पाकिस्तानी भी मुयारी दवाओं दिन व्यन जैसा हर मर्ज के हवाले से ट्रीटमेंट कई वजे थी कामयाब ट्रीटमेंट कई वजे थी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मरीजन में अफाक भी अची वा अल्लाह ताला की मेहरबानी से अस खोड़ सारा मरीज इन वक्त भी एडन वन बीमार जहा अंडर ऑब्जर्वेशन अलहमदिल्ला वक्त भी वन वन बीमार जहा पेशेंट अस अंडर ऑब्जर्वेशन जी ही जो उन्होंने कोर्स पूरा हिंसर सेहतयाब थी चुका 70% जी ही ठीक थन्ा तो उन्होंने व्यूज उन इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन अची अवं सो व्यूज रिकॉर्ड कराइंदा बुधाइंदा तो असा पैर कड़ी तकलीफ हुई केतरी तकलीफ हुई हाँ जो है सो अस होम्योपैथिक दवा के वण में केतरो फायद है सो इो जो है सो मरीज तदी बुधाई है अगलो जैसे उनके फायद पव है सो अवं सभी के यही दरख्वास्त है जैसे भी बीमार थो तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है सो कह होम्योपैथिक दवा जो को भी साइड इफेक्ट को नंबर असो 24 कलाक ही आन हों जरूरी कॉल करनी होंगी है कुछ पुछण हों नंबर वो हों नंबर जरूर नोट करा घणी के शिकायत होंगी है अवं नंबर जो है सो तेजी से अनाउंस इन के पा नंबर नोट करा तो जरूर नोट कदा 0301-2196-8051 0301-2196-851 जी हाँ हफ्ते जहा छ हफ्ते जहा छ अवे शहर मेहरापुर में सामू वधण पुटा पेट्रोल पंप ते क्लिनिक है सुबुह जो टाइमिंग 11 बजे का शाम जो 5 बजे ती हफ्ते जहा छ जैमें जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी सूमर जो ढी अंगारो क्लिनिक बंद होंगी है बाकाया बया ढी जो बुधाया अरबा खमीस यो ढी क्लिनिक खुलल होंगी है जैमें 3 ढी स्पेशली जुमे जो छंछर जो आचर जो चेकअप फीस फ्री होंगी है जी सर
0: तमाम घड़ी मेहरबानी सर प्रोग्राम है सेहत की गाल असाजे स्टूडियो में मौजूद आज डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब एक कॉल की तरफ अस्सलाम वालेकुम जेदा कह रहे किथा खां
3: बार मुलाका कलंदर बैठी हूं अब तो कर आया
0: जेदा छा पूछन चाहना डॉक्टर साहब का
3: साईं ने दोस्त आ उन्हें ये धक्का लगा जेल में खून चले न रो
0: जी जी अच्छा वो देखारस डॉक्टर साहब के रूबर त इलाज मौजूद है डॉक्टर साहब वट हां वो बुधाए तो डॉक्टर साहब के रेडियो बुधो जी सर
1: त जकडे एक्सरे करायल है त वेल एंड बेटर वधिक बेहतर है वो तवा खण देखार जकडे न भी है त तवा ही रूबरू देखारे वणो तो वधिक बेहतर है सेल्फ मेडिकेशन हरगिज न करियो आई मालिश हरगिज न करे ना कयो एड़े किस्म जे सूर में मालिश जको सो उन वक्त तवा के थोड़ो फायदो दींदी है पोए अवां जे लाए वो नुकसान आए रग दबजी सके थी हड्डी जको सो क्रैक थी सके थी इन जे करे मेहरबानी करे जको है सो मालिश हरगिज न कराईंदा करियो वध में वध आं खुद दस दींदो आहियां सरें जो तेल गरम करे हेड विझी उहो लगायो सिर्फ़ तव्हां अप्लाई कंदा कयो लॻाए छॾींदा कयो उहो अधु ख़ुदि जॾहिं जिस्म में जज़्ब थींदो आहे ऐं हॾियुनि में अंदरि जॾहिं उन जो तासीर वेंदो आहे तव्हांखे यकीन न ईंदो त केतिरो फ़र्क़ु पवंदो आहे तव्हां हेड खे मज़ाक न सम्झो हेड हिकु ईअं सम्झो त मेडिकल में जीअं सोज लाहिण जूं बुखार लाहिण जूं सूर लाहिण जूं इन्फेक्शन ख़तमु करण जूं वायरस ख़तमु करण जूं दवाऊं हूंदियूं आहिनि इहे सभु कम हेड में मौजूदु आहिनि हाँ यकीन मनी खुदा जी ज़ात ते यकीन रखो हेड एक कुदरती शे आए अवां जेकॾहिं हल्की फुल्की थकावट आहे आज़माए ॾिसंदा कयो उनखे हल्की फुल्की थकावट आहे सूर आहे धक लॻण जो सूर आहे तव्हां राति जो गरम खीर में हेड विझी ऐं उहो खीर पीअंदो त तव्हांजो जिस्म जेको आहे सुबुह जो तंदुरुस्तु तवाना हूंदो तव्हां तेल सरण जे गरम करे उन में हेड विझी ऐं उहो लॻाईंदो अवांजो जेको आहे सूर भॼी पवंदो ऐं हेड जा ॿिया यूनिक फ़ाइदा आहिनि हेड ते असां काफ़ी टाइम अॻे काफ़ी घणो ॻाल्हायो आहे हिन दफ़े वरी इनशा ताला हेड जो मौज़ू खणी अवां ताईं पहुचंदासीं ऐं अहिड़ी तरीक़े सां कुदरती शयूं आहिनि तमामु हाणे बि मां हिकु दोस्त खे जेको आहे सो असां जीअं अलॻि से नुस्ख़ा ॿुधाईंदा आहियूं न त तव्हांखे जेकॾहिं हिकिड़ो ख़्वारिश आहे तव्हां निम या पन पाणी में काढ़े ऐं उन सां वेझो या पेर धुओ या ज़ख़्म साफ़ु करियो तव्हां बिल्कुलु सही थी वेंदो त इन में इहो हक़ीक़त ते मुबनी हूंदो आहे निम बि अहिड़े तरीक़े सां ई हिकिड़ी कुदरती शइ आहे जंहिंमें वायरस इन्फेक्शन वग़ैरह स्वेलिंग वग़ैरह सभु ख़तमु थींदा आहिनि त हिकु दोस्त हाणे बि मूंखे कॉल करे जेको आहे सो ॿ ॾींहं अॻे कॉल करे सिर्फ़ु इन जे लाइ उन सम्झो छा लाइव प्रोग्राम आहे हुन कॉल करे मूंखे इहा ॿुधायो त अवां असांखे हेड जेको आहे इहो सॉरी निम जेको आहे सो ॿुधाईंदा आहियो त पाणी पता पाणी जा जेको आहे सो काढ़े ऐं उन पाणी सां जेको आहे सो अवां वेझारियोसि असां नंढड़े खे वेझारियोसीं हालांकि उन खां अॻे असां खोड़ सारा क़ीमती जेको आहे सो लोशन इस्तेमालु कयासीं पर नंढड़ो ठीकु न पियो थियो पर उन निम जे पाणीअ सां असां वेझारियोसीं उन नंढड़ो उहो बिल्कुलु ठीकु थी वियो आहे जे उहो दोस्त ॿुधे थो पियो त महिरबानी करे भली लाइव अचे ऐं उहो वरी दोस्तनि खे लाइव ॿुधाए सघे थो लेकिन उन दोस्त जो इहो बयानु हो जेको अवां ताईं पहुचायोसीं त इहे हिकिड़ी कुदरती शयूं आहिनि हिननि जो का बि बनावट कान्हे का तव्हांजी वॾी महिरबानी वक़्तु तव्हांजो तमामु घणो वरितोसीं ऐं इन सां गॾु जेको आहे प्रोग्राम जो बि छा टाइम पूरो थी चुको आहे सो वॾी महिरबानी
0: सर आख़िर में जेको पैगाम तव्हां
1: जी हा जी अवां शुरू शुरू में ॻाल्हि कंदा आहियो त सिहत जेको आहे सो बीठो यानी माण्हू बीठे जो सभु को आहे किरे जो केरी कोन्हे त सिहत हज़ार नेमत आहे ऐं प्रोग्राम बि सॼी ॻाल्हि आहे त इन जे करे पंहिंजे सिहत जो वधि में वधि ख़्यालु रखंदा कयो छो जो सिहत तव्हांजी आहे त सभु कुझु आहे जॾहिं सिहत न हूंदी त अवां कुझु बि न आहियो इन जे करे पाण खे हेल्दी रखण जे लाइ तव्हां पंहिंजी सोच साफ़ु रखंदा करियो सफ़ाई जो ख़ासि ख़्यालु रखंदा कयो खाइण पीअण जो साफ़ु ख़्यालु रखंदा कयो वॾी महिरबानी
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे अलाह हाफ़िज़ अलाह वाही
4: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
5: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan

सिंध मां धाड़ेल राज जो खात्मो, ख्वाब बणियल धाड़ेलनि जी सरेंडर पॉलिसी बि मुकमल तौर नाकाम। सूबे में फुरू, धाड़ा, चोरियूं, अगवा ऐं इंसाननि जो कतलेआम रोज़ जो मामूल बणियल। KTN न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल, धाड़ेलनि हथां अगवा, बाज़ाबी लाइ 1 करोड़ रुपया भोंग तलब। पनवाकिल जे कचे मां गाॾी हथ, DIG सखर। KTN न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी अगवा जी तस्दीक करे छॾी। घरू वज़ीर ज़ियाल अजार ऐं IG सिंध सहाफ़ी जे अगवा जो नोटिस वरितो, DIG सखर खां रिपोर्ट तलब। DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण चयो आहे त KTN न्यूज़ जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल खे अगवा कयो वियो आहे। बाज़ियाबीअ लाइ संजीदा आहियूं, ड्रोन कैमरनि ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू कई आहे। KTN न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज बणियल। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, सखर, शदादपुर, रतोदेरो, बख्शापुर, भान सईदाबाद, न्यू सईदाबाद, ठिकराठो, कश्मोर, डहरकी, जरवार, रोहिड़ी, कंबर, कोटडिजी, राधण, पनवाकिल, तंगवाणी, ठारू शाह, मुरीद शाह, डोकरी, मीरपुर साकरो, अठहठि मोरी, गंबट, मदेजी, मुबारकपुर, सगियूं, ड्रिमबिहार शाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलम धरण एहतजाज कयो। साफ़ी अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करण जो मुतालबो। बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन जारी। 4 ॾींहनि दौरान 71 खां वधीक दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। ISPR मूजिबि 21 सेप्टेम्बर खां कोइटिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कयो वियो। ज़ियारत ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। रुॻो ऑपरेशन शाहबान में हेल ताईं 33 स्पॉन्सर दहशतगर्द मारिजी विया। 25 सेप्टेम्बर ते नौशकीअ में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। मंड में 6 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे मक़दार में हथियार ऐं बारूदी मवाद बेत कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस इलाइक़े खे क्लियर करे माण्हुनि खे ख़तरे खां महफ़ूज़ बणायो। भारतीय सरपरस्तीअ में अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ दहशतगर्दी शहर नमून लाइ ख़तरो बणियल। पाकिस्तान नूरिस्तान बाबति अफ़गानिस्तान जी दावा रद्द करे छॾी। अफ़गानिस्तान जी दिफ़ा वारी वज़ारत जूं दावाऊं कूड़ियूं करार। सुतसमा वफ़ाक़ी वज़ारत मूजिबि अफ़गानिस्तान लॻायल इल्ज़ामनि जूं के बि शाहिदियूं पेश न आहिनि कयूं। नूरिस्तान में मुबैना तशद्दुद बाबति अफ़गानिस्तान जूं दावाऊं हक़ीक़तुनि जे उबतड़ ऐं कूड़ियूं आहिनि। अफ़गान तालिबान रजीम पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लॻाए अंदरूनी सिक्योरिटी सूरतहाल तां ध्यानु हटाइणु चाहे थो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि कंहिं खां लिकियल नाहिनि।

0: कंहिंखे बि कानून हथ में खणण ऐं फसाद करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। सिंध हुकूमत हर साज़िश खे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला ऐं बीएड अढ़ाई साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो पहिरियों कदम वधायो।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।

जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। आपते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी

0: अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो सख़्तु फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं एडीपी मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अदावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे पंजनि साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे टिनि वॾियुनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलासु थियो, जंहिंमें इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ़ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जे मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज़ में उजागर करे हुन हिदायत कई त मुआशिरे जे समूरनि तबक़नि जी नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुल मोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तुलु थियो हुयो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबश भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादन मुस्मान सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबश कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबश सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुझे अमर जो भा हो, उन भा नाराज थी खुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल्ह ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लाक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो
इरादो रखूं था। जॾहिं पंजनि अहम मनसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिशि आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुॻो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितरु सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां आवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ख़ुराक वारे आलमी इदारे WFPA में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइणु, ग़िज़ाइत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पाइदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻि $80 million जी ग्रांट फराहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFPA जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFPA जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं खुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमालु ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदिली या रिटायर थींदड़ आफ़िसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह क़ानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमालु कंदड़ आफ़िसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल आफ़िसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी ला मस्तोई, फ़ख्रु ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैंप बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूदि जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैंप ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिट जे जनाज़े जी रैली पिणु कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराचीअ तरफ़ प्यादल मेरिट लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त उनजी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकिरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान, झिरक ऐं ठट्टे खां थींदो, कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदनि समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघिजे थो। एडवोकेट इसरार हुसैन चांग चयो त सॼे सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ऐं सखर डिवीज़न में 25 खां 30 सेप्टेम्बर 2026 ताईं कलम 144 लागू करे छॾियो आहे। हुकम तहत 5 या वधीक माण्हुनि जे गॾु थियण, एहतजाजी रैलियुनि, जलसनि ऐं जुलूसनि ते पाबंदी हूंदी। हुकूमत जो मौक़िफ़ु आहे त हीउ क़दम अमन अमान बरक़रार रखण ऐं कंहिं बि अणवणंदड़ सूरत हाल खां बचण लाइ खयो वियो आहे। पर हिन फ़ैसिले सां गॾु केतिराई अहम सवाल बि साम्हूं आया आहिनि। सियासी ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं वाकई को मखसूस सिक्योरिटी ख़तरो मौजूदु आहे त उन बाबति अवाम खे वाज़े ॼाण ॾिनी वञे। रुगो आम पाबंदी लॻाइण सां बेयकीनी ऐं मुंझारो वधी सघे थो। सिंध में हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियूं एहतजाजनि जी तयारी करे रहियूं आहिनि, जॾहिं त क़ौमपरस्त जमायतूं बि पंहिंजे मुतालबनि जे लाइ मुज़ाहिरनि जा ऐलान करे चुकियूं आहिनि। अहिड़े पस मंज़र में कलम 144 खे कुझु हल्का सियासी छिकताण सां बि जोड़े रहिया आहिनि, जॾहिं त हुकूमत उनखे ख़ालिस इंतज़ामी ऐं हिफ़ाज़ती क़दम क़रार ॾेई रही आहे। कानूनी माहिरनि मूजिबि कलम 144 हंगामी हालतुनि जे लाइ हिकु आर्ज़ी कानूनी अख़्तियार आहे, जंहिंजो इस्तेमालु ज़रूरत ऐं तनासुब जे उसूलनि तहत थियणु घुरिजे। पुरमन एहतजाज ऐं तशद्दुद वारी सरगर्मीअ में फ़र्क़ु बरक़रार रखण बि जमहूरी निज़ाम जो अहम हिसो आहे। हाणे नज़रूं हुकूमत ते आहिनि त छा उहा पाबंदी बाबति वधीक वज़ाहत जारी कंदी या हालतुनि जी बहितरीअ सां उन में नरमी आंदी वेंदी। अमन अमान बरक़रार रखण सां गॾु शहर जे बुनियादी हक़नि जो तहफ़ुज़ बि रियासत जी अहम ज़िमेवारी आहे। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601 00
6: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014541 456 आई तौकीर अहमद 03067

0: गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माया गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो सख़्तु फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं ADP मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अदावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे पंजनि साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे टिनि वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिंमें इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ़ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई त फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जे मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज़ में उजागर करे हुन हिदायत कई त मुआशिरे जे समूरनि तबक़नि जे नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमर सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुल मोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तलु थियो हुयो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख़्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादिन मुस्मा सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबख़्श कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबख़्श सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमर बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुंहिंजे अमर जो भाउ हो। उन हितां भाउ नाराज़ थी ख़ुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल्ह ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो
इरादो रखूं था जॾहिं पंजनि अहम मंसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिशि आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुॻो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितर सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ख़ुराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइणु, ग़िज़ाइत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पाइदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻि $80 million जी ग्रांट फराहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतिज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं ख़ुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमालु ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ु हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदली या रिटायर थींदड़ ऑफिसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह कानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खेनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमालु कंदड़ ऑफिसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल ऑफिसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़ख्रु ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैंप बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूदि जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैंप ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिणु कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराचीअ तरफ़ प्यादल मेरिड लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त हुनजी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकिरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान झिरक ऐं ठट्टे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघिजे थो। एडवोकेट इसरार हुसैन चांग चयो त सॼे सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले, मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25-30 सितंबर 2026 तक कलम 144 लागू कर छो है। हुकूमत तहत 5 या मान के गड थियण एहतजाजी रैलिन जलसन ए जुलूसन से पाबंदी होंगी। हुकूमत जो मौकफ़ है तो ही कदम अमन अमान बरकरार रखण ए कें भी अणवणंदड़ सूरत हाल का बचण लाय खयो वियो आहे। पर इन फैसले सा गड केतरा ही अहम सवाल भी सामू आया है। सियासी ए समाजी हल्कन जो चवण है तो जैकॾहिं वाकई को मखसूस सिक्योरिटी खतरो मौजूद है तो उन बाबत अवाम के वाज़े जान दी वे रुगो आम पाबंदी लगाने से बेयकीनी ए मुंझारो वधी सके तो। सिंध में इन वक्त मुख्तलिफ़ सियासी धुरियों एहतजाजन की तैयारी कर रही हैं, जदें तो कौम परस्त जमायतों भी पांचे मुतालबन के लिए मुजाहरन ऐलान कर चुकियो हैं। अड़े पस मंजर में कलम 144 के कुछ हल्का सियासी छिकताण से भी जोड़े रहा है, जदें तो हुकूमत उन खालिस इंतजामी ए हिफाजती कदम करार दई रही है। कानूनी माहिरन मूजिब कलम 144 हंगामी हालतुन के लिए एक आर्जी कानूनी अख्तियार है, जिनजो इस्तेमाल जरूरत ए तनासुब के उसूल तहत थियण घुर्जे। पुरमन एहतजाज ए तशद्दुद वारी सरगर्मी में फर्क बरकरार रखण भी जमहूरी निज़ाम जो अहम हिस्सो है। हाँ नजरू हुकूमत से आन तो पाबंदी बाबत वजाहत जारी कंदी या हालतुन की बेहतरी से उन में नरमी आंदी वी। अमन अमान बरकरार रखण से गड शहर के बुनियादी हकन जो तहफुज भी रियासत की अहम जिम्मेवारी है। ही हुयो हिन वक्त ताईं जो सिंध राउंडअप। बे आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ए बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी ज़रूरत आहे।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-510-5109।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिं
6: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐ 02424601000
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक

0: रौनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा
3: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 0301-380-8743।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो सख़्तु फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं ADP मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अदावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारीअ जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे पंजनि साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिंमें इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई, फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जे मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज़ में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशिरे जे समूरनि तबक़नि जी नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुल मोहम्मद भंगवार मोरो भर सां क़तलु थियो हुयो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबश्क भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादन मुस्मा सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबश्क कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबश्क सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुझे अमर जो भा हो। उन हितां भा नाराज़ थी खुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल्ह ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो
इरादो रखूं था जॾहिं पंजनि अहम मनसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिशि आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुॻो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितरु सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ख़ुराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइणु, ग़िज़ाइत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पाइदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻि $80 million जी ग्रांट फराहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतिज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियणु ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं ख़ुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमालु ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ु हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदली या रिटायर थींदड़ आफ़ीसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह क़ानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खेनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमालु कंदड़ आफ़ीसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल आफ़ीसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़ख्र ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैंप बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूदि जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैंप ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिणु कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराचीअ तरफ़ प्यादल मेरिड लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त उन जी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकिरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान झिरक ऐं ठट्टे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघे थो। एडवोकेट इसरार हुसैन चांग चयो त सॼी सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले, मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25-30 सितंबर 2026 तई कलम 144 लागू कर छो है। हुकूमत तहत 5 या मान के गड थ एहतजाजी रैलिन जलसन ए जुलूसन से पाबंदी होंगी। हुकूमत जो मौकफ है तो हि कदम अमन अमान बरकरार रखण ए कें भी अणवणंदड़ सूरत हाल का बचण लाय खो वो है। पर इन फैसले का गड केतरा ही अहम सवाल भी सामू आया। सियासी ए समाजी हल्कन जो चवण है तो जैसे वाकई को मखसूस सिक्योरिटी खतरो मौजूद है तो उन बाबत अवाम के वाजे जान दी वे। रुगो आम पाबंदी लगन से बेयकनी ए मुंझारो वधी सके तो। सिंध में इन वक्त मुख्तलिफ़ सियासी धुरियों एहतजाजन की तैयारी कर रही हैं, जदें तो कौमपरस्त जमायतू भी पांचे मुतालबन के लिए मुजाहरन जहा ऐलान कर चुकी हैं। अड़े पस मंजर में कलम 144 के कुछ हल्का सियासी छिकताण से भी जोड़े रहा है, जदें तो हुकूमत उन खालिस इंतजामी ए हिफाजती कदम करार दई रही है। कानूनी माहिरन मूजिब कलम 144 हंगामी हालतुन के लिए एक आर्जी कानूनी अख्तियार है, जिनजो इस्तेमाल जरूरत ए तनासुब के उसूल तहत थियण घुर्जे। पुरमन एहतजाज ए तशद वाली सरगर्मी में फर्क बरकरार रखण भी जमहूरी निज़ाम जो अहम हिस्सो है। हाँ नजरू हुकूमत से आन तो पाबंदी बाबत वजाहत जारी कंदी या हालतुन की बेहतरी से उनमें नरमी आंदी वी। अमन अमान बरकरार रखण से गड शहर के बुनियादी हकन जो तहफुज भी रियासत की अहम जिम्मेवारी है। यो इन वक्त तई जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत है। अल्लाह निगहबान।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।